और दोस्तों प्यार में तो कभी कभी छोटी बात से बड़ी बात हो जाती है, आपको तो मालूम है। और कभी कभी प्यार में लोग भूल जाते हैं कि कौन से बात वो करते हैं, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। तो ये सब बात है हमारे यारो, तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो है ओ साथी रे।

0: या जीना है और रेडियो फाहुन के बिना कैसे रात कटेगी। तो हम चलते हैं एक रोमांटिक सॉन्ग किशोर जी के आवाज में।
1: हाँ
2: या चुप रहूं
1: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है
1: क्या है

और दिल की टुकड़ी टुकड़ी करके और मुस्कुरा के चले गई। उसके बाद पे हम एक और गीत को सुनाते हैं।

0: हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा आम
1: अरे जाम। तो ये बात है दोस्तों, दोस्तों इस गीत का है देखा है पहली बार और मूवी के नाम है जांजन अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम का रोमांटिक सॉन्ग।

और मूवी का नाम है साजन। और कुछ हिट सॉन्ग आप लोग को हम आज सुने, तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर।

और दर्द करने को ये सॉन्ग दे। और हम चलते ही दोस्तों, आप लोग जानते ही यार नेघंत का सोन, और वो कुछ और थे और इन गोल तो और कुछ है दोस्तों। और जो नया नया गीत है वो तो भी अपनी जगह पे भी वो ठीक है, लेकिन हम चलते हैं यार नेघंत का जोंग, और वो है बहुत प्यार करते हैं और करते ही रहेंगे। मोफिक राम है जाजन।

प्यार करते हैं, तुझको जन्म तार आया है लेवार्दे से दोस्तों। मैं दीवाना मस्ताना और मैं दी मुगेश का ये सॉन्ग है।

ये बहुत पुराना गीत है और करोड़ों को दिल चुराने वाला वो है माइती मुकेश का ये सॉन्ग है। और इस फिल्म में दोस्तों बहुत पुराना फिल्म है 40 Days का ये मूवी सॉन्ग है जो आप सबके लिए हमने चला दिया है। इसमें प्रेमनाथ ने काम किया है शकीला के साथ। तो दोस्तों तो प्यार का सुहाना जफर आपको हम सुनाएंगे। मुकेश एवरग्रीन्स मेलोडी सॉन्ग है, ओल्ड हिंदी रोमांटिक सॉन्ग आपको हम यहां से सुनाएंगे। और गीत है इस फिल्म में दोस्तों, लेकिन आपको हम सुनाएंगे प्यार का सुहाना जफर।

और दिल भी हम आपको दिया है और आप भी अपना दिल उसी को दीजिए जिस इस तुम्हारे दिल के काबिल है। तो काबिल के बांज करते हैं तो हम चलते हैं मौफी के नाम है भरोसा निकटी हो द्रियन जस्तक का ये फिल्म है और गुरुदत्त और आशा परेख ने इस मूवी में सुपर हिट फॉलो फिल्म है जिसमें काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए दोस्तों।

0: क्यों ना जुल्मियो जालिम ले जाना होते।
1: यस दोस्तों, तो ये कुछ बीच बीच में कभी कभी अच्छे अच्छे गीत सुनाने के मूड में हम हो जाते हैं, और जब गीत सुनाते हैं तो कभी कभी दिल भी रो देते हैं हमारे दोस्तों।

तारीफ करते हैं गुरुदत्त और आशा पारेख ने। भरोसा मूवी के नाम है निकटी द्री एंसेस्टर का बदमाश श्री मोहम्मद रफी का ये गया हुआ जोंग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला अगला अगला अगला जोंग की ओर है।

अए दिल मुझे भी आँ बता दे तू किस पे आ गया है, अगर आपके दिल किसी पे आ गया है तो जरूर बता देना।

इसमें फिल्में और फिल्म के नाम है अंदाज 1949 तक का ये सॉन्ग है जिसमें दिलीप कुमार ने काम किए हैं और राजेंद्र कुमार ने काम किए हैं नौशाद के साथ में हम चलते हैं एक और सॉन्ग आशा भोसले मधुबाला अशोक कुमार इस फिल्म में काम किए हैं हावड़ा ब्रिज

मूवी के नाम थी हावड़ा ब्रिज। एक और अगला सॉन्ग के जैसे दूर कोई गाए धुनिए।

और दूर कोई गाए धुनिए सुनाए और मेरे मने और क्या क्या है दोस्तों, ओल्ड एंड गोल्ड का ये सॉन्ग है।

आपको ये सुन रहे थे पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज़ लो मैं आ गया, आप बुलाए और मैं ना आऊँ ये तो हो ही नहीं सकता। सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर भजन हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते और सभी दुखी प्राणियों के लिए, और ख़ास करके ये भजन हम पेश करते हैं भाई जगदीश लक्ष्मण जी के वास्ते और प्रदीप नाथू जी के वास्ते, क्योंकि इन दोनों का तंदुरुस्ती जो ठीक नहीं चल रहा था लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर है, तो ख़ास करके इन दोनों के नाम हम ये भजन पेश करते हैं और आप सभी सुनने वालों के लिए। चलिए मिलकर सुनते हैं

अभी आप सुन रहे थे सुनोरे प्यारे भाई, प्रभु के भरोसे हाको गाड़ी, हरि के भरोसे हाको गाड़ी। और ये गीत हमने वेरी वेरी स्पेशली चलाए हैं जगदीश लक्ष्मण जी के वास्ते और प्रदीप नाथू जी के वास्ते, क्योंकि इन दोनों का तंदुरुस्ती कुछ ठीक नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। और सभी दुखी प्राणियों के लिए हमने ये भजन चलाए हैं। मिल ना सका दिल को अगर प्यार तुम्हारा, आना पड़ेगा मुझको दुनिया में दोबारा। मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं, चलिए मिलकर सुनते हैं सुनने वालों।

तमाईती मुकेश जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे मिल ना सका दिल को अगर प्यार तुम्हारा, आना पड़ेगा मुझको दुनिया में दोबारा। होता है सुनने वालों, याद ना जाए बीते दिनों की। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं

ये सुबह जितनी खूबसूरत है उतना ही आपका हर एक पल हो। ये सुबह जितनी खूबसूरत है उतना ही आपका हर एक पल हो। जितनी खुशियाँ आपके पास आज है इससे भी ज़्यादा कल हो। जो अभी अभी अपने बिस्तर से उठे हैं उसे हम गुड मॉर्निंग कहना चाहेंगे। प्रोग्राम को आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। किशोर दा आपको सुनाने वाले हैं।

जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। अभी आप सुन रहे थे किशोर दा की आवाज़ में, और ये तो सच्चाई है सुनने वालों। मुझे ज़िंदगी की सच्चाई उस वक्त पता चली जब रास्ते पर पड़े फूलों ने मुझसे कहा कि दूसरों को ज़्यादा खुशबू देने वाले अक्सर यूं ही कुचल दिए जाते हैं। सुनने वालों, ये गीत पहले बहुत ज़्यादा चलते थे रेडियो पर, यानी रेडियो पर, और जब किसी के शादी होती थी या विवाह संस्कार होते थे तो बहुत ज़्यादा ये गीत चलते थे। जीवन में पिया तेरा साथ रहे,

सुनने वालों, पहले ये गीत बहुत ज़्यादा रेडियो पर चलते थे विवाह संस्कार के उपलक्ष पर, शादी के उपलक्ष पर। और एक गीत ये भी है फ्रॉम द मूवी साथी से आप सुनेंगे, मेरा प्यार भी तू है ये बहार भी तू है।

मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, फ्रॉम द मूवी साथी से हमने पेश किया है सुनने वालों। मेरा प्यार वो है कि मरकर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने ना देगा, ये तो सच है सुनने वालों कि मेरा प्यार आप लोगों के लिए ऐसा ही है। फ्रॉम द मूवी ये रात फिर नहीं आएगी, महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने ना देगा, फ्रॉम द मूवी वो रात फिर नहीं आएगी। हम सफ़र मेरे हम सफ़र लता जी आपको सुनाने वाले हैं, फिल्म का नाम है पूर्णिमा।

अभी आप सुन रहे थे हम सफ़र मेरे हम सफ़र पंख तुम परिवाज हम, लता जी के साथ में द माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी पूर्णिमा। कर ले दिल की बात, अरे कर ले दिल की बात, आज मौका है पता है, यानी पता नहीं है कि ये मौका फिर मिले ना मिले, तो अगर आपको दिल की बात करनी है ना तो ज़रूर कीजिएगा।

कर ले दिल की बात, कर ले दिल की बात, आज मौका है। सुनने वालों, पता नहीं ये मौका फिर मिले ना मिले, अगर आपको दिल की बात करनी है ना तो ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चले। फ्रॉम द मूवी एक हसीना दो दीवाने।

अभी आप सुन रहे थे दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चले। फिल्म का नाम है सीमा। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं जब ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। मोहम्मद रफी जी के साथ में शारदा जी आपको सुनाने वाले हैं, चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे, जब भी ये दिल उदास होता है जाने कौन आस पास होता है, शाडा के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी सीमा से हमने पेश किया है। सुनने वालों, हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को, सरस्वती चंद्र है फिल्म का नाम। चलिए इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मुकेश जी की आवाज़ में।

हमने अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को। दमाइती मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी सरस्वती चंद्र से हमने पेश किए हैं। सुनने वालों, मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। कन्हैया है फिल्म का नाम। एक बार फिर से मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं।

मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। अभी आप सुन रहे थे नमाइती मुकेश जी की आवाज़ में, फ्रॉम द मूवी कन्हैया से हमने पेश किए हैं तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ। फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता।

0: से
1: तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ। फ्रॉम द मूवी हरियाली और रास्ता से हमने पेश किए हैं सुनने वालों, गायत है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं दिन ढल जाए हाय रात न जाए तू तो ना आए तेरी याद सताए। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं।
2: लेकिन जब उतरता है

हमने जो देखे सपने सच हो गए वो अपने भी आप सुन रहे थे। फ्रॉम द मूवी परिवार से हमने पेश किए हैं सुनने वालों, और आपको सुनाने वाले थे लता जी के साथ में महेंद्र कपूर जी। तेरे दिल में जरा सी जगह अगर मिले, मोहम्मद रफ़ी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी अनोखी अदा।

0: राकेश नमस्ते, ये लव लेटर आपने मेरे नाम लिखा है?
1: लाइए ना।
0: ये अब सीधे अंकल के पास ही मिलेगा।

तेरे दिल में जरा सी जगह अगर मिले, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी अनोखी, अदा से हमने पेश किए हैं सुनने वालों। तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे, मोहम्मद रफी जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी रखवाला से।

दिल ने दिल से न जाने क्या कहा, तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी रखवाला, से हमने पेश की है मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में। लता जी आपको सुनाने वाले थे तुमने मुझे देखा होकर मेहरबा, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी तीसरी मंजिल से आप सुनेंगे।

हमने मुझे देखा होकर मेहरबा, तीसरी मंजिल से हमने पेश किया है सुनने वालों, फ्रॉम द यानि मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। छुप गए सारे नज़ारे, ओए क्या बात हो गई। मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी दो रास्ते से।

चुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी दो रास्ते से, लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा।

हे मानव, अब तू इस अमृत वाणी की मसाल लेकर अपने भीतर और बाहर के अंधकार से निकल, क्योंकि ये अमृत वाणी तेरा कवच भी है और शस्त्र भी। इस अमृत वाणी की मसाल अपने युग के धृतराष्ट्रों, दुर्योधनों और शकुनियों को पहचानने में तेरी सहायता करेगी। इस मसाल के प्रकाश में तू ये देख सकेगा कि अन्याय आज भी उतना ही ढीठ है जितना प्राचीन हस्तिनापुर में था। तू देख सकेगा कि धर्म ने अधर्म की चादर ओढ़ रखी है। हे मानव, तू इनसे हटकर अपना रास्ता बना, नहीं तो ये तुझे भी अपने अंधकार में घसीट लेंगे। तू प्रकाश का उत्तराधिकारी बन, तू न्याय का उत्तराधिकारी बन, तू धर्म का उत्तराधिकारी बन और अपने भीतर की कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बना। यही मोक्ष है, यही अमृत वाणी है।

अमृतवाणी प्रेमियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम, सत श्री अकाल, आदाब और नमस्कार। मैं आपका सेवक गोपाल परदेसी बाबा, परमात्मा सबके लिए दूसरी भाग। आप आए हुए सभी भक्तजनों, आराम से बैठकर इसे श्रवण कीजिए और इसे अपने जीवन में अवश्य उतारने की कोशिश करना। भक्तों, बालकपन में खिलौनों की कामना होती है, पर आज खिलौनों की कामना होती है क्या? होती है? नहीं होती है, नहीं होती है। इससे सिद्ध हुआ कि कामना छूटती है, कामना छूटती है तो आप दूसरी कामना पकड़ लेते हैं। एक कामना छूटी, दूसरी आपने पकड़ ली। इस तरह आप नए नए कामना पकड़ते रहते हैं सज्जनों, नए नए कामना पकड़ते रहते हैं आप। अगर पकड़ना छोड़ दे तो निहाल हो जाए, आजाद हो जाएंगे आप, छुटकारा पा जाएंगे आप इस दुनिया की जंजाल से। परमात्मा प्राप्ति की कामना तो कभी किसी की नहीं मिटती सज्जनों, केवल दब जाती है, उसे हम दबा देते हैं। इस कीचड़ और जो कूड़ा हम अपने अंदर में रखे हैं उसके नीचे दबा देते हैं। कीचड़ कूड़ा क्या है? आपका बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे कामनाएं, ये है कीचड़ कूड़ा इत्यादि। और जो कामना टिकती नहीं उसको तो पकड़ते रहते हैं हम, और जो कामना मिटती नहीं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। ये हमारी वस्तु स्थिति है सज्जनों, वास्तविकता है और बिल्कुल गलत है। जिसको हम पकड़ना चाहिए परमात्मा को, उन्हें हम छोड़ दिए हैं, और जिसको हमें छोड़ना है उसको हम पकड़ के जकड़ के बैठे हुए हैं। उसके लिए हम दिन रात रो रहे हैं। धन दौलत वस्तुएं पदार्थ इत्यादि इत्यादि, अरे परमात्मा की कामना पूरी करने में आप सब सबल हैं, निर्बल नहीं है। परंतु संसारिक कामना पूरी करने में आप सब निर्बल है, कोई सबल नहीं है, कोई में वो ताकत नहीं है। सब तो फंसे हुए हैं दुनिया के मोह माया में सज्जनों। आए हुए सभी सत्संगियों, सभी सत्संगी जो हमारे सामने हमारे साथ में बैठे हुए, अब एक सवाल उठती है कि संसार की इच्छा और परमात्मा की इच्छा दोनों बिल्कुल विपरीत होते हुए भी एक ही जगह रहती है क्या? प्यारे प्यारे अमृतवाणी के प्रेमियों, दोनों इच्छाएं एक ही जगह होती है। जहां भोग की इच्छा है वहीं मोक्ष की भी इच्छा है। भोग की इच्छा पूर्ण होगी और परमात्मा की इच्छा जागृत होगी, जागृत होगी सज्जनों।

संसार की इच्छा को मिटा दो, बिल्कुल मिटा दो, तो परमात्मा की इच्छा आप से आप पूरी हो जाएगी, अपने आप पूरी हो जाएगी सज्जनों। मगर संसार की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, असंभव, हमेशा इच्छा लगी रहेगी, ये हो जाए, वो ले लूं, वो खरीद लूं, वो कमा लूं, वो पालूं, इत्यादि इत्यादि। लाखों करोड़ों अरबों जन्म हो जाएंगे आप तो भी पूरी नहीं होगी, बल्कि नए नए पैदा होती रहेगी, नए नए इच्छा पैदा होती रहेगी सज्जनों। जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाय। श्रोताओं, तो दोनों विपरीत यानी अलग इच्छाएं एक ही जगह कैसे रहती है, कैसे रहती है? तो भक्तों, एक इच्छा को तो आपने पकड़ा और एक इच्छा आप में स्वतः है, वो आपके पैदाइश ही से है, जब से ये सृष्टि है वो आप में है भगवान को पाने के लिए। संसार की इच्छा को तो आपने पकड़ा है और परमात्मा की इच्छा आप में खुद में है, आप में है, वो उसको आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जागृत करने की आवश्यकता है सज्जनों। मैं सदा जीता रहूं, मेरे में और कोई अज्ञान न रहे, मैं सदा सुखी रहूं, ये आपकी खुद की इच्छा है भक्तों, ये आपकी खुद की इच्छा है। भोगों की इच्छा आपकी खुद की इच्छा नहीं है, भोगों की इच्छा आपकी खुद की नहीं है, इच्छा को उत्पन्न करने वाली आप खुद है, आप स्वयं हैं इच्छा को उत्पन्न करने वाली सज्जनों। अगर आप खुद संसारिक इच्छा को छोड़ दें तो वो टिक सकती ही नहीं है, नहीं टिक सकती है। जिसकी पूर्ति होनी असंभव है उसको तो छोड़ ही देना चाहिए ना। दुनिया के वस्तु पाने के लिए असंभव है, उसको छोड़ दो, परमात्मा को अपना लो, तो जो आपको मिलना चाहिए वो अपने आप मिलेंगे सज्जनों। संसारिक इच्छा इसलिए पूरी नहीं होती कि संसार नहीं है, और परमात्मा प्राप्ति की इच्छा इसलिए पूरी होती है कि परमात्मा है, परमात्मा है। संसारिक वस्तुएं कभी सदा नहीं रहती, मिट जाती है, पर परमात्मा सदा ही रहते हैं सज्जनों, सदा ही रहते हैं। इस बात को आप ठीक से समझे, कंठस्थ करो सज्जनों। भूल क्यों गए हो? भूल नहीं गए हो आप, आप जानबूझकर दुख की क्षेत्र पे चल पड़े हो। ये दुनिया एक दुख की क्षेत्र है, दुख की गांव है, और आपके शरीर भी दुनिया के दुख आप बटोर बटोर कर आप खुद अपने शरीर में डाल रहे हो। क्यों, किस लिए? प्रसन्नता प्रभु का प्रसाद है सज्जनों, इसे ज्ञान और विवेक के द्वारा सहेज कर रखना ही बुद्धिमत्ता है सज्जनों। अगर आपको देखना ही है तो हर एक की विशेषताएं देखिए। अगर आपको कुछ छोड़ना है तो अपनी कमजोरियां छोड़िए सज्जनों, अपनी कमजोरियां को छोड़िए, और वो है कि दुनिया में फंसे हुए हो आप, मोह माया के पीछे भाग रहे हो, यही आपकी मेरी सबकी कमजोरियां हैं। हमको इस कमजोरियां को छोड़ना है, छोड़ना मुश्किल काम है,
मगर असंभव नहीं है प्यारे प्यारे भाई बहनों, असंभव तो नहीं है। तो संकल्प करो अपने में कि आज से आप छोड़ना शुरू कर देंगे, प्रतिदिन कुछ ना कुछ छोड़ते रहो। जैसे मैं बार बार कहता हूं ना कि प्रतिदिन आप एक झूठ कम बोलो, निंदा कम सुनो, कम करो इत्यादि इत्यादि, तो एक दिन सब छूट जाएंगे। मगर शुरू तो करना है, आपको तो शुरू करना है सज्जनों। बुरा किसी का मत करो, बुरा बुरे का फल आगे तेरे आएगा, आज नहीं तो कल। प्रभु आप मुझे मिलो या ना मिलो ये तो आपकी इच्छा है भगवान, मगर मुझे उनसे मिलवा दो जो आपको मिल चुके हैं। प्यारे प्यारे भाई बहनों, परमात्मा सबके लिए ये दूसरे भाग मैंने आपको आज बतलाए हैं। आने वाला मृतवाणी में तीसरी भाग सुनेंगे आप, आखिरी भाग सुनेंगे। मेरी विनती है आपसे कि जीवन में सुख शांति पाने के लिए आपको परमात्मा को अपनाना ही पड़ेगा, और भगवान को अपनाने के लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। मोह माया से आहिस्ता आहिस्ता दूर होने की कोशिश करो, उसका उपयोग करो, जरूर उपयोग करो, मगर उसमें लिपटो मत, चिपको मत। तो तब तक मुझे आज्ञा दीजिए आप सभी को, मेरा प्यार भरा राम राम, सत श्री अकाल, आदाब और नमस्कार। मिलेंगे फिर अगर रहा जिंदगी।

इस बोल के द्वारा जो बात हम आपको बतलाने जा रहे हैं, हम आशा यही रखते हैं कि आप मुझ पर नाराज ना हो, क्योंकि आज के जमाने का ये हकीकत है। तो इसको जरूर ध्यान पूर्वक आप श्रवण करें। अगर आप इस तरह का है तो जरूर आप पर लागू है। सुनिए और पहचानिए अपने आप को।

हर एक दिल से हमारा नाता है, हर रोज की तरह हमेशा की तरह होगी प्यारी प्यारी बातें और कुछ मीठी मीठी बातें होगी हमसे और तुमसे, और कुछ भजन हम आप लोग का जो सुनाने वाला हूँ। एक घंटे का प्रोग्राम है दोस्तों, आप सब चुन है द एवरग्रीन लव फॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो पे। मैं हूँ आपकी खिदमत में अनिल सारजू, जो 8 बजे से 9 बजे तक भजन का प्रोग्राम में आपके साथ में करूंगा। तो लीजिए दोस्तों, काफी वक्त हम नहीं लेंगे। ये भी जरूरी बताना चाहता हूँ, जहां तक ये आवाज पहुंचे वहां तक हमारा दुलार पहुंचे, प्यार पहुंचे और बहुत बहुत मोहब्बत पहुंचे। जहां पे दुख है हर एक के साथ हम शामिल है दुख में, और जहां सुख में वहां भी हम लोग सब शामिल है। पूरा टीम फाहून की तरफ से आप सभी को राम राम, नमस्कार। एक बार और चलो कुछ हम हनुमान चालीसा से शुरुआत करेंगे और चलो हम मिलकर सुनते, क्योंकि आज भजन का प्रोग्राम है एक घंटे का दोस्तों, जहां तक ये आवाज पहुंचे हमारा मोहब्बत भी पहुंचे।

जी हाँ, हमारे प्यारे सुनने वालों, आप सब द एवरग्रीन लव फोन हिंदुस्तानी रेडियो पे चुन हैं और आज सुबह है, सुबह का प्रोग्राम है। मैं अनिल सारजू इस प्रोग्राम को कर रहा हूँ और आज भजन का प्रोग्राम, एक घंटा का प्रोग्राम हम चलाएंगे, सिर्फ भजन ही होगा। और अगले भजन तो मैंने रख चुका है जतिन सिंह का, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अभी आप सुन रहे थे हनुमान चालीसा, उसमें बहुत ही ताकत है और बहुत ही ज्ञान वाले भजन है। इसके सुन के बहुत ज़्यादा ज्ञान आ सकता है। हर लोग जो इस वक्त इस अपने पूजा पे और हनुमान चालीसा को सुनते ही रहना, और इसमें बहुत ही ताकत है, बहुत ही ज्ञान है। आगे इस ज्ञान को बांटना हम लोग के काम है, जरूर आगे इस ज्ञान को बांटना चाहिए। हे राम हे राम हे श्री राम, चलो हम सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ से।

जहाँ दोस्तों जगजीत सिंह की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे हे राम मंगलवार आज का जो प्रोग्राम है भजन का प्रोग्राम है दोस्तों। चलो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस भजन में कुछ बातें ऐसी हैं जो हर भजन के दिन मेरा मैं इस भजन को आप तक पहुँचाता हूँ सुनाता हूँ। इस पर एक अच्छा बात है कि इस भजन में अगर आपका आप जो रूप में जैसे भी भगवान से प्रार्थना करते ही अगर इसे आप बजा के अपना हाथ जोड़ के आँख बंद करके दो फूल लेके चढ़ाते हैं और पूरा भजन को सुनते हैं हर एक चीज पूरा हो जाता है। इस भजन में एक ऐसा दम है कि हर एक चीज पूरा हो सकता है। हम लोग इंसान हैं और भगवान को बुलाना नहीं चाहिए। ये हे राम यही कहते ही जय जो रूप में हमें पुकार बाकी बुलाओ एक फूल लेके अर्पण कर और हे राम करके मुझे बुलाओ तू ही माता तू ही है पिता है। ये भजन में कुछ बहुत इस ऐसा दम है कि सोचने वाली बात है हमारे सुनने वाले कुछ तो बात है इसमें। ठीक है चलो हम आगे आप लोग के लिए जाते हैं आप एवरग्रीन फोन पे चुने दोस्तों।

लीलाओं में सबसे नटखट लीला माखन चोरी, उसी पर यह भजन सूरदास जी ने लिखा है जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में माखन चोरी करने जाते थे और गोपियां शिकायत करने आती थीं यशोदा के पास कि यशोदा तुम्हारे बेटे ने हमारे घर में बहुत उपद्रव किया, बहुत नुकसान कर दिया। तो यशोदा गुस्से में कन्हैया को बुलाती, उनसे कहती, कन्हैया ये सब क्या करके आए हो, देखो सब तुम्हारी शिकायत करने आई। तो कन्हैया बड़े भोलेपन से मुस्कुरा के कह देते, मां इन सब की बातें मत सुनना, ये सब झूठ बोल रही हैं, ये तो सब बहाना बना के आई हैं मुझे देखने। बस बात वहीं समाप्त हो जाती। लेकिन आज कन्हैया ने अपने ही घर में माखन चोरी की और मां ने देख लिया। बाद में अचानक मां पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या? अचानक पूछा था तो कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया,

क्या सच्चाई है आप सभी जानते हैं। कन्हैया ने माखन खाया है, इतना ही नहीं मां ने देख भी लिया। अब मुख से निकल गया मैं नहीं माखन खायो, तो बस कन्हैया ने सोच लिया

भारतीय शास्त्रीय संगीत की विशेषता है कि रागों की रचना हुई है समय के अनुसार, अलग अलग समय के अलग अलग राग हैं, मौसम तक के राग हैं। यहां वर्णन है भोर और सांझ दो समय का। नियम के अनुसार दोनों के अलग अलग स्वर होते हैं। आप ध्यान दें, मैं आपको भोर भोर के स्वरों में और सांझ सांझ के स्वरों में सुना रहा हूं। मेरा प्रयास है शायद आपको लगे कि ये भोर है और ये सांझ है।

नहीं चला ये तर्क। दूसरा तर्क दिया, कहने लगे मां जरा सोचो, मैं इतना छोटा सा बालक हूं, छोटे छोटे हाथ हैं मेरे, मैं कैसे माखन चुरा के खा सकता हूं।

माँ मुस्कुरा दी, इशारा किया कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो, ये जो मुंह में माखन लगा है ये कैसे लग गया। कन्हैया ने सोचा ये तो बड़ी भूल रह गई,

नहीं चला ये तर्क। अब कन्हैया ने सोचा कि मां की थोड़ी खुशामद करते हैं, तारीफ करते हैं तो शायद मान जाएगी, खुश हो जाएगी, क्षमा कर देगी। अब देखिए स्वर, लय, भाव, शब्द, इन सब की सहायता से ये दिखाना है कि कन्हैया मां की खुशामद।

कोई असर नहीं हुआ। अब थोड़ा गुस्सा दिखाया, कहने लगे, मां एक लाठी और एक कंबल मुझे दे दिया है और सुबह सुबह भेज देती हो गाय चराने, कल से ये काम उससे नहीं होगा।

विशेष बात हो गई, मां को ज्यादा कठोर हो गई थी। कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी कोई मां नहीं सुन सकती, वो तो यशोदा थी।

महबूब जोरोथा की आवाज अभी आप सुन रहे थे, मैं नहीं माखन खाई। ये गाना कुछ सरे सोलह मिनट का गाना था, मैंने इसलिए इस गाने को सुनाया है कि आप देख सकते हैं कन्हैया ने अपनी माँ से सरे सोलह मिनट झूठ बोला है, सरे सोलह मिनट बात तो भी कन्हैया ने सच कहा है, मैं नहीं माखन खाया दुनिया भर के बबाल से बतियात बतियात। लास्ट पे कन्हैया बोलिस, मैंने ही माखन खाया है। ये कुछ दम ये झूठ है, ये दो तरीके का झूठ है, एक झूठ है जो झूठ बोलने बोल सकते हैं और एक झूठ है जो झूठ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम चलते ही आगे और कृष्णा के फिर एक भजन है जो जगजीत सिंह ने गाया है।

जहाँ दोस्तों भी आप सुने थे हरे रामा हरे कृष्णा, ये भी भजन है जो हम लोग सुन सकते हैं हमारे प्यारे सुनने वालों। चलो हम आप लोग को सुनाते हैं एक बार फिर से अनूप जलोथा को।

तौबा मेरी तौबा, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठा लो। मूवी सिकंदर निकंदन अख्तन सस्त का जो इसका जो म्यूजिक बजाया गया है शंकर जय किशन और हसरत जयपुरी का जो हाथ है कलम जो से लिखा गया है वो हसरत जयपुरी है। ठीक है दोस्तों, मैं अगले प्रोग्राम को अगले गाने को मैंने चुन पे रख चुका हूँ, दम मारो दम। चलो हरे रामा हरे कृष्णा जीना तमन, जीना तमन ने काम किया है देव अनंत जीना तमन और आशा भोसले की आवाज से दोस्तों। और देखा जाए ये भी आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है और म्यूजिक सजाया है एरदे बिरमन। चलो मिलके सुनते हैं एवर ग्रीन लव फॉर हिंदुस्तानी रेडियो से।

जी हम दोस्तों दम मारुदम अभी आप सुने थे दम मारुदम और हम आपको ले जाते हैं इस वक्त रंबा हो शंबा हो चलो हम सब सुनते हैं।

जी हाँ, रंबा हो हो हो, शंबा हो हो हो, मूवी अरमान, उषा उत्तम, पप्पी लहरी और इन विवार आप सुन रहे थे दोस्तों। चलो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ याद आ रहा है, देखा जाए तो पप्पी लहरी का ये डांस नंबर है, याद आ रहा है, पप्पी लहरी है डिस्को डांसर का ये जो गाना है और लाइरिक से अनजान अनजान जो इस हाथ चलाया है और म्यूजिक पप्पी लहरी का है। चलो हम आप लोग सुनाते ही डिस्को डांसर और मिथुन चक्रवर्ती ने इसमें काम किया है।

जी हाँ दोस्तों, हो जाए तो बल्ले बल्ले दिलर मेहंदी का आवाज अभी आप सुन रहे थे। हम चलेंगे बोले तारा रा रा रा रा रा रा। चलो सुन के देखे, देखते ही मिलके हम आप लोग सुनाते हैं। देखा जाए तो बोले तारा रा रा रा रा भी मैंने गाने को देखा है और यहाँ है वो गाना, हम आपके सुनाते हैं बोले तारा रा रा रा। क्या हुआ यार, देखा जाए तो कुछ गड़बड़ हो चुका है इसमें, देखा जाए इसमें तो है कुछ और हम इस गाने को रखते हैं, थोड़ा से कुछ गड़बड़ हो चुका है इसमें।

जय दोस्तों, हर एक को हम यहाँ से राम राम कहते ही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातु हो और खुदा हाफिज हो। हर एक जुम्मा मुबारक हो। हर एक जो हमारा साथ दिया है हम उनको राम राम नमस्कार कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग प्रोग्राम को सुने हैं, पसंद भी करे हैं। काफ़ी लोग हैं जिसका फरमाइश से मैं देंस तक के ज़रूर सुनाऊँगा। यहाँ से हम बहुत विदाई लेंगे। देंस तक के मंगलवार को हम आपके साथ ज़रूर रहेंगे। यहाँ से हम न्यूज़ रखते हैं, कुछ बयान है, उसके बाद हमारा प्रोग्राम द्वारका ले लेगा राजन द्वारका हमारा कोलेगा जो प्रोग्राम को आगे ले जाएंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए जाने के लिए। राम राम नमस्कार और खुदा हाफिज़ हो।

जी हाँ दोस्तों, बोल मेरी तकदीर में क्या है, मेरे हम सफर अब तो बता, मूवी हरियाली और रास्ता नई खतीन तो शस्त्र का, जिस पे मनोज कुमार माला जिले ने काम किया है, शंकर जय किशन का म्यूजिक है। चलो हम ले चलते हैं एक बार फिर से हरियाली और रास्ता से निकाला हुआ एक गीत है, एक गाना है जो लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ है, और देखा जाए शंकर जय किशन का म्यूजिक है, लाख तारे आसमान पे।

जी हाँ दोस्तों, दिल मेरा चुपचाप जला, हरियाली और रास्ता, नेहती ट्विन सेस्ता का फिल्म है मूवी। मनोज कुमार माला जीना ने इसमें काम किया था। अभी आप सुन थे मुकेश और लता का आवाज। हमने चलते ही एक बार फिर से हरियाली और रास्ता का बोले, कहीं कहीं पे राजा और रानी भी रहता है ना, तो चलो राजा और रानी के बारे में हमको सुनाते हैं। और हरियाली और रास्ता का निकाला गाना है

जहाँ दोस्तों एक बार मैंने फिल्म से चला दिया था हरियाली और रास्ता का मुझे बहुत पसंद है ये गाना। हम सोचते हैं आगे में आप लोग के भी पसंद है। तो ठीक है, एक था राजा एक था रानी।

जहाँ दोस्तों बोले नाव तो खो गया, रह गया पानी, फिल्म हरियाली और रास्ता से भी आप सुन रहे थे, एक था राजा एक था रानी, नेकदिन टू इंसेस्ट का है, मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है। चलो मैं चलते हैं दोस्तों हरियाली और रास्ता का नेकदिन टू इंसेस्ट फिर से एक बार देखा जाए तो कौन सा गीत मैंने रखा है यहाँ पे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। शंकर जय किशन का म्यूजिक है।

जहाँ दोस्तों इब्तदाई इश्क में हम हरियाली और रास्ता का निकाला हुआ गाना है, काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं और ये मूवी भी काफ़ी अच्छी मूवी है। हम एक बार फिर चले चलते हैं ये हरियाली और रास्ता।

ये हरियाली और रास्ता नेकन सस्ता का मूवी है, मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है। चलो एक गीत और है, बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है, तेरी याद दिल से भुला ना सकूंगा, करोड़ों का दिल जीतने वाला, मिलियंस ऑफ हार्ट, मुकेश का गाया हुआ गाना है। चलो हम सब मिलकर सुनते हैं, हरियाली और रास्ता का ये निकाला हुआ गाना है, नेकन का है जे। फिल्म बिना देखे से उसे देख सकता है, काफी अच्छी फिल्म है, मूवी।

0: से।
1: जी हाँ दोस्तों, तेरी याद दिल से भुला ना सकूंगी, मूवी हरियाली और रास्ता नहीं कंटिन। द मिलियन ऑफ आर्ट्स नाइट मुकेश की आवाज थी, शंकर जय किशन का म्यूजिक थे। एक आखिरी गाना है फिल्म हरियाली और रास्ता का, हम सब मिलकर सुनते ही परवानों की रात। आशा भोसले इस गाने को गाया है, नहीं कहीं तो इस शस्त्र का है

जी हाँ दोस्तों, अभी आप जोर देते एक आखिरी गाना मूवी हरियाली और रास्ता का, आशा भोसले ने गाया था, मनोज कुमार मलाजीना ने इसमें काम किया है, नई कंचन ट्विंस का है। ठीक है दोस्तों, हम चलते ही मूवी में आप लोग के लिए चलते नई कंचन वेफन शस्तक में, जोहर महमूद इन गोवा, अंखियों का नूर है तू, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ है दोस्तों, सुलेमान कल्याणपुर जो इसका सिंगर है, सुलेमान कल्याणपुर और मुकेश ना लता मंगेशकर नहीं है, सुलेमान कल्याणपुर और मुकेश की आवाज़ है, कल्याण जानन जी का ये म्यूजिक है। और देखा जाए आप लोग के हमले चलते हैं नई कंटीन फाइव तक में, आँखियों का नूर है तू।

जी दोस्तों, आँखियों का नूर है तू, आँखियों से दूर है तू, जुलेमान कल्याणपुरी और मुकेश की आवाज़ अभी थे। नेगेटिव 5/6 तक का ये गाना है और फिल्म हैगा जोहर महमूद इन गोवा। चल हम एक बार फिर से आपको ले जाते हैं नेगेटिव 5/6 तक में, जोहर महमूद और गोवा के एक बहुत ही अच्छा गाना है, अच्छा गीत है मन्ना दे और पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी का, और इसका म्यूजिक सजाया गया है कल्याण जी, आनंद जी, अलाला जालाबादी इसका जो लिरिक्स लिखा है दोस्तों। चलो मिलकर हम सुनाते हैं

चले हे चले हे चले हे ससुरार। अभी आप सुन रहे थे जोहर एंड महमूद इन गोवा, लोदो दीवाने दिल के चले हे देखो मिल के, महमूद सिमी अग्रवाल और जोहर इसमें काम किया इस मूवी में। चलो हम ले चलते हैं एक ऐसा गाना है फिल्म जोहर महमूद के, जोहर महमूद इन गोवा निकले फैंस तक में। और देखा जाए तो एक जो गाना अब हम रखे बहुत वही गाना है और हम सब मिल के सुनेंगे, उषा खन्ना गाई से और मुकेश इसका जो म्यूजिक बजाए से कल्याण जी आनंद जी है, और वही जलाबादी का ये लिखा हुआ गाना है। हम आप लोग के सुनाते हैं दोस्तों एक ऐसा गाना जो हम बहुत दिन ना सुन ली है और बहुत मन की सुनत, काफ़ी लोग जो प्रोग्राम को सुनते हैं, और अभी ये गाना आप सब के नाम है दोस्तों।

0: सभी को राम राम नमस्कार और ढेर सारा दुलार पहुंचे, जहां तक ये आवाज पहुंचे वहां तक हमारा पैगाम पहुंचे और ढेर सारी मोहब्बत पहुंचे। दूर दूर से लोग प्रोग्राम को सुनते हैं। मैं हूं आपकी खिदमत में अनिल सरजू, जो कुछ हिले मिले जुले गीतों से हम आप लोग के सेवा करेंगे। मैंने कुछ गाने चुन करके लाए हैं, कुछ पुराने गाने हैं और उम्मीद है आप लोग के जरूर आज का रेडियो प्रोग्राम फाहून द्वारा जरूर पसंद आएगा। आप सब चुन है द एवरग्रीन लव लव फाहून हिंदुस्तानी रेडियो पे, और मैंने चुन करके रखा है मूवी फिल्म हम सफर के एक ऐसा गीत है जो लता मंगेशकर और द नाइट मुकेश ने गाया है, जो करोड़ों का दिल जीत चुका है, जीत लिया था, जीते जाते भी है। क्या आवाज है मुकेश और लता मंगेशकर का, आवाज है किसी राह में किसी मोड़ पर। लता मंगेशकर मुकेश लाइरिक्स, जो हाथ और कलम चलाया गया है, जो सिहाही से लिखा गया है वो आनंद बख्शी है, म्यूजिक सजा करके हम लोग तक लाया है कल्याण जी। आनंद जी, हम आप लोग के मिल के सुनाते हैं, जितने लोग प्रोग्राम को सुनते हर एक के लिए ये गीत मैं पेश करता हूँ नामोस रेडियो फाहून।
1: मैंने देखा नहीं, तुम बंसी भी बजाते हो?
2: हाँ हाँ, सुनाओ।
1: अरे अरे, अभी नहीं, क्या तुम भूल गए हो? तुम छुप कर जा रहे हैं।
2: खुशी के मारे मैं तो भूल ही गया था।
1: खुशी? किस बात की खुशी?
2: न जाने क्यों
1: राजू, तुम बहुत अच्छे हो।
2: बापू और उस्ताद के बाद एक तुम ही हो जिसने मुझे अच्छा कहा।
1: तुम्हारा अपना और कोई नहीं है?

मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मूवी मेरे हम सफर, किसी राह पर किसी मोर पर। चलो दोस्तों, अगले गाने को मैंने चुन पे रख चुका हूँ, रख दिया है आपके लिए, मूवी हीरा हीरा हीरा तमन्ना एल्बम, मूवी हीरा तमन्ना है और सिंगर है किशोर कुमार और लता मंगेशकर, फिर से लाइरिक्स आनंद बख्शी के, और देखा जाए म्यूजिक है लेबल शरगमा। चलो दोस्तों, हम आपके सुनाते हैं जिसमें काम किया है देवानंद और जीना तमन्ने, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए।

ज्यादातर मूवी हीरा पन्ना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ है। ब्याह सुर रहे थे दोस्तों आनंद बख्शी का लिरिक्स, और आप जानते ही राहुल देव परमन का म्यूजिक। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं प्रोग्राम। आप ही तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं हैं, और आप सब चून है द एफ अगेन लव फॉर हिंदुस्तानी रेडियो पे। मैं हूँ आपके खिदमत में अनिल जारजू। हम आगे प्रोग्राम चलाते हैं। मुकेश जी का एक गाना हम आप लोग को सुनाना चाहते हैं, जो प्यार से गाया है, जिस गली में तेरा घर ना हो बाल माँ। मूवी कति पतंग तक का है, और देखा जाए म्यूजिक डायरेक्टर है एरदेव बर्मन। एक बार फिर से आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है, और हम आपके नाम करते हैं क्योंकि आप प्रोग्राम को सुनते ही जितने गाना या गीत हम चलाते हैं बस आप सबके नाम है। दूर दूर से लोग प्रोग्राम को सुनते हैं और बहुत पसंद करते, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। ऐसे ही सुनते रहना, ये गीत भी आप लोग के नाम है, मूवी कति पतंग के, जिसमें जितेंद्र आशा परीक ने काम किया है।

0: बालमा।
1: जी हाँ दोस्तों, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, मूवी कति पतंग। मेरी कंतिन एनन सैफन तक का ये फिल्म है जिसका आपने अभी गीत को सुना है, और जो जो सुनता है हर एक गीत जो मैं चला रहा हूँ बस आप सबके नाम है। चलो दोस्तों, हम अगले संस को लगा चुके हैं अगले गाने को, और देखा जाए देखिए तो कौन मूवी दो कल्याण मेरी कंतिन आतन शस्त्र का है यार। और देखा जाए तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई, कभी कभी हो जाता है चना, नज़र भी खफा हो जाते हैं लोग से जुदा हो जाते हैं तो क्यों खफा नहीं हो सकता है। पद्माश्री मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का आवाज़ है, म्यूजिक डायरेक्टर रवि। हम आपको सुनाते हैं, मिल के सुनेंगे तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई।

जहाँ दोस्तों तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, पद्मश्री मोहम्मद रफी ऑफ द क्वीन लता मंगेशकर की आवाज, म्यूजिक जिसने सजाया है वो रफी है और लाइरिक्स साहिर, मूवी दो कद दो कल्याण निखंतीन अख्तर सस्त का जिसमें माला सिन्हा और विश्वजीत ने काम किया है। चलो दोस्तों अगले गीत को मैंने चुन पे रख चुका हूँ। देखा जाए एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले, मूवी जिंदगी और तूफान निखंतीन फैफन जैफन तक का है यार, और गाने वाला वही है मुकेश लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का म्यूजिक है और लाइरिक्स राम अवतार। चलो हम मिलकर सुनते हैं

जी हाँ, हमारे सुनने वाले एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले, मुकेश की आवाज थी। चलो दोस्तों आगे ले चलते ही, ना जाने क्या हूँ। बहुत विशाल गाना है, यह गाना है लता मंगेशकर का, मूवी दर्द है नहीं कंती एनन तख्त का। न जाने क्या हुआ जो तुम छोड़ लिया, छू लिया। ये गाना हम सोच रहे सब कोई जाने और सब कोई के मुँह लगे, लता मंगेशकर का आवाज़ है और सब कोई सुने खोई जा मिल के। फोन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप सब चोर है दोस्तों, मिल के सुनेंगे। न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया।

ना जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया मूवी दर्द नहीं खनते इन तख्त का जिसमें हेमा मालिनी रजेश खन्ना ने काम किया है। तो चलो दोस्तों हम आप लोग के लिए चलते मूवी प्रोफेसर नहीं खनते ट्विंसेस्ट का जिसमें सामी कपूर और कल्पना ने काम किया है और गायक और गायिका है पद्मश्री मोहम्मद रफी और दक्षिण लता मंगेशकर म्यूजिक शंकर जयकिशन और लाइरिक्स से साई लेंद्रा।

जी हाँ प्यारे सुनने वाले, मैं चली मूवी प्रोफेसर निकंदन ट्वेन सस्त का चलम आगे ले चलते, दूरी ना रही कोई, लता मंगेशकर की आवाज है। और देखा जाए जी हम दोस्तों, लता मंगेशकर म्यूजिक, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लाइली से कफीन अजार मुत के जो लिखा गया है, हाथ और कलम उसी ने चलाया है। चलो मिलके सुनते हैं रेडियो फोन के जरिए से

लता मंगेशकर। लता मंगेशकर एक एहसास है जिसे महसूस किया जाता है, बयान नहीं। ये एक नाम है जिसे सुनते ही मेरे दिल में सुकून और चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। टू मी शी इज इथीरियल, समवन फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, लार्जर देन लाइफ, नो लेस देन अ गॉडेस, अ देवी। दिस वन नेम इवोक्स अ मिलियन फीलिंग्स इनसाइड मी। आई हैव कोल्ड फीट, वीक नीज, अ नॉट इन माई स्टमक, I smile on my lips and tears in my eyes. In other words, I feel alive when I hear this name, Lata.

जी हाँ दोस्तों, तुम मुझ में समा जाऊं, मैं तुझ में समा जाऊं। द क्वीन ऑफ लता मंगेशकर की आवाज़ थी और कर्तव्य मूवी का नाम है और रेखा और धर्मेंद्र पाजी ने इसमें काम किया है। चलो दोस्तों, हम आप लोग के सुनाते हैं तेरे इश्क का मुझ पे हुआ है असर।

तेरे इष्ट का मुझ पे हुआ है असर। आशा भोसले पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज से मूवी नागिन निकली सेशन ज़ैफ़न तक का है। ठीक है दोस्तों, मैंने वक्त से पूछा मेरा क्या कसूर था। वक्त हंस के बोला कसूर तो कुछ बड़ा नहीं था, बस तूने हर किसी को दिल से अपना समझ लिया और जिए इस दुनिया में सबसे बड़ा कसूर होता है। जहां हर रिश्ता दिल से नहीं निभाया जाता है, हाय तुम दिल से जीते रहा है और लोग मतलब से याद करता है, दिल से नहीं। ये ऐसा होता है हमारे प्यारे सुनने वाला, शायद बोलने में कुछ गलत हो गया, ये ऐसा होता है। आपकी खिदमत में मैं हूँ अनिल जारजू और आप सब द एफगे लॉ फाहौन हिंदुस्तानी पे चुन है। देखा जाए तो अभी हम आप लोग के

आप ही का हैप्पी स्टेशन 5 ऑन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। काम जो आपको रेडियो के सिरे कराना है, कांटेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 7 5 2 8 4 0 या 9 7 3 7 2 0 0 पर आप तार कीजिए। तार का नंबर मैं दोहराता हूँ, अपन अखेंडा में लिख कर रख लीजिए आज नहीं तो कल के लिए 9 7 5 2 8 4 0 या 9 7 3 7 2 0 0। तार का नंबर है शान। दोस्तों शान एक गायक है, लेकिन शान को एक बैंड एक ग्रुप भी है, एक म्यूजिक ग्रुप है दोस्तों, और उसी म्यूजिक ग्रुप के आवाज़ में आप म्यूजिक सुनेंगे और शान के गला से आप ये गीत को सुनेंगे।

शान, मिस्टर शान की मीठी आवाज़ में अभी आपने इस सॉन्ग को सुना। फावन हिंसानी दुबाप चुन है दोस्तों, उदित नारायण। उदित नारायण आपको फरमाएंगे कि हवाओं ने ये कहा, और जैसे आप सभी को मालूम है कि हवा भी आवाज़ देता है दोस्तों, लेकिन कहता है हवा तो मुझे मालूम नहीं है। आशा रखता हूँ कि आपको ये गीत सुनकर पता लग जाएगा कि हवा कहता है और हवा ने क्या कहा, आपको खुद मालूम हो जाएगा। आप खुद सुनिए दिल और जान से।

उदित नारायण, पद्मश्री उदित नारायण के मीठे आवाज में भी आप ये गीत को सुना। दोस्तों, जानू मेरी जान, तू मेरा मैं तेरा, या तू मेरी मैं तेरा, जाने सारा होलांत। दोस्तों, ये फिल्म शान का सॉन्ग है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन काम किया है परवीन बाबी के साथ। आप सभी को मालूम है कि दोनों में प्यार मोहब्बत था, फिर भी परवीन बाबी जो है वो डिप्रेसिव हो गया था, और जब डिप्रेसिव हुआ तब कई लोग के बारे में अनबन कहा, और कहा कि भारत की सरकार जो है उन्हें भी फॉर द रेक्टर एग्जाम किया था, उसका मूड खराब हो गया था। सो लेकिन उसी समय पे एक पार्टी पे परवीन बाबी ने गया, और अमिताभ बच्चन उसी समय पर सुपरस्टार चुना गया। तो परवीन बाबी से सवाल किया गया कि आप क्या ये बात से सही है कि अमिताभ बच्चन सुपरस्टार चुना गया? तो परवीन बाबी ने कहा, अमिताभ बच्चन एक सुपरस्टार नहीं है, सुपरस्टार का पद अगर देना है तो धर्मेंद्र को दीजिए, देवानंद को दीजिए, ऋषि कपूर वगैरह का नाम लिया तो उसके तीखा ना अमदद प्यार मोहब्बत अब नहीं था, और डिप्रेसिव हो गया था। ठीक से देखा जाए तो उसको आप भी नाराजी नहीं मान सकते, इस बात पर को अलग नहीं ले सकते हैं, वो नहीं जानते थे वो क्या कहते। फिर भी जो इसके दिल में आया वो कहा, जानू मेरी जान। ये दोनों लॉफर्स दोस्तों, परवीन बाबी और साथ ही साथ अमिताभ, दोनों का फिल्म शान का सॉन्ग।

प्रेमी अमिताभ बच्चन परवीन बाबी का फिल्म शान का सॉन्ग भी आपने प्रोग्राम में सुना। उदित नारायण एक बार फिर प्रोग्राम में, लेकिन उदित नारायण के साथ रहेगा विनोद राठौर और साथ ही साथ अलका याग्निक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक पर। और ये गीत अनंत बख्शी ने लिखा है। दोस्तों आप जानते हैं, एक गीत जब तैयार होता है तो गीत का लिखार कोई होता है, जो लिखता है गीत को स्क्राइफर, वो भी एक कलाकार है, लेकिन लोग उसका नाम नहीं लेते हैं। जब एक गीत नहीं लिखा जाता तो उदित नारायण अलका वगैरह वगैरह लोग गीत कैसे गाते, तो एक स्क्राइफर का तालीफ किया जाहिर किए करने को, इसलिए कि स्क्राइफर जो है वो बैठ कर दिन रात सोचते हैं क्या लिखूँ और जाकर गीत बनाते हैं। और एक गायक गीत को गा लेता है, बढ़िया आवाज़ है तो गा लेता है। फिर भी आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत है तेरे बिना दिल।

तेरे बिना दिल लगता नहीं मेरी जान, वाह वाह क्या बात है दोस्तों। अगर दिल लगाना है तो एक जगह पर दिल लगा लीजिए, दो जगह दिल लगाएंगे तो आगे चलकर पछताना पड़ेगा। आदमी है जो चार जगह दिल लगाता है वो भी होता है, हो सकता है भी। दोस्तों राजकुमार एक एक्टर था, जब वो कुछ कहते थे तो लोग ध्यान से सुनते थे कि अब क्या बोली। तो फिल्म और इंडिया जब बना बहुत पॉपुलर हो गया राजकुमार, उसके बाद चारों बगल से उन्हें कॉन्ट्रैक्ट आने लगा। तो एक रात एक शाम की बात है, जब वो अपने दोस्त प्रकाश अरोरा और उनके पत्नी के साथ इवनिंग ड्राइव पर निकले थे। इस दौरान वो एक पान स्टोर पे रुके, उसी समय वहाँ कुछ लोग आए, और जब वहाँ पर लोग आए तो राजकुमार को परेशान करने लगे। कुछ देर तो राजकुमार बर्दाश्त करते करते रह गए, फिर भी जब बात उन्हें सहन शक्ति से भर गए तो उन्हीं ने बात या पलट कर जवाब देने लगा। आप जानते हैं राजकुमार का मुंह जो है वासी सबसे मौच कफाला, तो वो जवाब देने लगा। फिर लड़ाई हुई, लड़ाई का शुरुआत हो गया दोस्तों, और एक शख्स ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दुख के बात है दोस्तों, लड़ाई के समय और किसी ने नहीं देखा कि वो शख्स जो मर गया उन्हें किसी ने मारा, राजकुमार ने मारा या उसके दोस्तों ने, लेकिन वो शख्स दुनिया को छोड़ चल गए। और एक साल तक मामला चलता रहा, राजकुमार का प्रॉब्लम था एक साल तक, और काम नहीं कर सकता था। फिर भी ये बात जज के सामने पेश किया गया और राजकुमार को फ्री हो गया। राजकुमार को कहा गया कि आपने एक काम नहीं किया, फ्री हो गया। मैं नहीं जानता राजकुमार किया या नहीं किया, फरदाख्त था। और आप जानते हैं फिर भी उन दिनों के बात है या इन दिनों के बात है, जब लोग पॉपुलर होते थे तो उन्हें बहुत कम सज़ा भी मिलते थे। तो उसके बाद राजकुमार को यहाँ वहाँ से फिर कॉन्ट्रैक्ट मिलने के शुरुआत हो गया। आप जानते हैं 3 जुलाई 1969 तक के बात है, जब राजकुमार का मृत्यु हो गया था मुंबई में। तो फिल्म हमराज का सॉन्ग है, राजकुमार और सिमी दोनों के आवाज दोनों फिल्म में काम किया, और ये गीत महेंद्र कपूर, पद्मश्री महेंद्र कपूर के आवाज़ में आप

पिछले गगन के तले धरती पर पाँव पड़े राजकुमार के बारे में मैंने कहा भी दोस्तों, और अब की बार एक सॉन्ग मैं तैयार करके रखा हूँ, फिल्म चलते चलते का सॉन्ग है, अभिजीत एंड अलका दोनों के मीठे आवाज़ में आप सुनेंगे शाहरुख खान एंड रानी मुखर्जी का फिल्म चलते चलते का सॉन्ग।

तौबा ये नसारे, तौबा नसार के बाद लाखों है यहाँ दिलवाले, फिर प्यार नहीं मिलता। कैसा बात है दोस्तों, लाखों है दिलवाले फिर प्यार नहीं मिलता। हाथ में फूल ले लो, देखो कैसे प्यार मिल जाएगा। फिल्म किस्मत का सौ है, विश्वजीत बबीता फिल्म में काम किया दोस्तों। विश्वजीत एक न सिर्फ एक एक्टर था, लेकिन अभी तो जियत है, मैंने कहा उनका एक्ट के समय पर, उन्हें सिर्फ एक एक्टर था लेकिन एक प्लेबैक सॉन्गर था दोस्तों। कई गाना वो गाए हैं, हॉलैंड देश में शो दिया है, सूरीनाम में भी शो दिया है। तो विश्वजीत का फिल्म किस्मत का सॉन्ग है, जो निकटिंग आतन शास्त्र में फिल्म जो रिलीज हुआ, और महेंद्र कपूर पद्मश्री महेंद्र कपूर के आवाज़ में आप सुनेंगे, लाखों है यहाँ दिलवाले फिर प्यार नहीं मिलता।

डुएट डुएट सॉन्ग का बात जब हुआ दोस्तों, तो कुमार सानू आलका के साथ सबसे ज़्यादा डुएट पेश किया है या गाए है, और सभी डुएट में से एक डुएट है आज पहली बार, आज पहली बार दिल के बात की है। एल्बम तड़ी पार का सॉन्ग है और हम सब मिलके सुनेंगे फिल्म तड़ी पार का सॉन्ग आज दिल के बात, आज पहली बार दिल के बात की है।

हर एक काम जो रेडियो के सिरे कराना, जैसे कि खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, आप कॉन्टेक्ट कीजिए फाह और हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर से न्यू सी फन तक 3 से 5 2 8 2 8 फी सी पर आपको तार करना है।

दिल की महफिल सजाने लगी। दिल के महफिल सजाने लगे के बाद जब भी तुम्हें देखूं तो चैन मिल जाता है। यकीन कीजिए, क्या बात है आप में कि जब तुम्हें देख लेता हूं तो दिल का चैन आ जाता है। वाह,

Nieuw song met Piskarunga Dosto, 2025 में ये गीत बना है और मेरे सनम आया है, गाना बोल है मेरे सनम आया है, हम सब मिलकर सुनेंगे.

न्यू सॉन्ग का प्रोग्राम मैं पेश करता हूँ दोस्तों। एक दूसरा न्यू सॉन्ग जो मैं चॉइस करके रखा हूँ, नया प्यार नया एहसास, क्या बात है, नया प्यार नया एहसास। यूबीन नौटियाल के आवाज़ में आप

यार है नया एहसास है। आप ही का हैप्पी स्टेशन फाह ऑन हिंदुस्तान रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। मुझे सजना से मिला दे, सजना से मिलना है तो मिला दे मुझे सजना से। न्यू सॉन्ग का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं।

जब जब तेरा प्रेम है अच्छा, जब प्रेम है अच्छा तो सजना जरूर मिलेगा सच्चा तेरे हवाले। अरिजीत सिंह एंड श्रिया घोषाल दोनों के आवाज़ों में। मैनू मैनू चाहिए इश्क में रंग तेरा, एक हो गया अंग मेरा अंग तेरा।

इंडी लव सॉन्ग्स, बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग्स में अब की बार पुसी का संगीत आप सुनेंगे। इश्क दीवाना होता है और मस्ताना होता है, उसी से क्या क्या होता है दोस्तों।

हर खुशी से हर गम से, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है मून कॉलिंग, नेहा कक्कर एंड गुड़ सिद्धू।

0: हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322447। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemeen

हम यार है तुम्हारे, यकीन कीजिए यकीन कीजिए, हम यार है तुम्हारा अगर यकीन नहीं है तो आप तार करके अभी बातचीत कर सकते हैं। यकीन के साथ दोस्तों, हम यार है तुम्हारे।

यार है तुम्हारे। यकीन कीजिए, यकीन के साथ मैं भी कहता हूँ कि हम यार है तुम्हारे। याद आ रहा है, तेरी याद आ रहा है दोस्तों, उन दिनों के बाद है जब बप्पी लहरी ने कदम रखा था सॉन्ग वर्ल्ड में। तो मिथुन का फिल्म था डिस्को डांसर, इसी फिल्म का सॉन्ग है। और बात यह है कि उन दिनों में के बात है जब किशोर कुमार एक टॉप पे था दोस्तों, हर एक फिल्म में उसका गीत होता था। लेकिन किशोर कुमार मिथुन के लिए गीत नहीं गाना चाहता था। जो फिल्म में मिथुन काम करते थे उसमें किशोर कुमार कभी गाना नहीं गाना चाहते थे। बात यह था कि किशोर कुमार का औरत दोस्तों, बीबी जोगीता बली जो थी, उन्हें मिथुन हम खोल के हिंदुस्तानी बोलेला, यहाँ देखिए उसे फंसे है, ओके मिथुन भगा ले गए रहा। तो इसी कारण मिथुन के हर एक फिल्म जब निकलता था तो किशोर कुमार इनकार कर देते थे, उसका फिल्म में गाना नहीं पेश करते थे। फिर भी पपीदा, जी हाँ दोस्तों, पप्पी लहरी के नाम से हम ज़्यादा अभी उन्हें पुकारते थे, उन्हीं का सॉन्ग है, हम सब मिलकर सुनेंगे।

रहा है पपीरा बप्पी लहरी दोस्तों। पप्पी लहरी भी फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी पाया और पप्पी लहरी जितेंद्रा का 12 हिट फिल्मों में भी गीत को पेश किया। सभी फिल्म से एक फिल्म था फिल्म हिम्मत वाला, हम सब मिलकर सुनेंगे। नैनो में सपना, किशोरदा, लता मंगेशकर और बप्पी, सभी के आवाज में आप सॉन्ग सुनेंगे।

संजना पे दिल आ गया फिल्म हिम्मत वाला। अभी जो सॉन्ग भी आपने सुना वो किशोर और लता का गीत था, लेकिन बप्पी लहरी इस फिल्म में भी प्लेबैक किया है। बप्पी लहरी जी हाँ दोस्तों, बप्पी लहरी को नहीं 66 तक तक में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में इनका नाम आया, इसलिए कि एक साल के अंदर मेरदान होने तक तक फिल्म जी हाँ दोस्तों 180 से ज़्यादा गाना एक पेश किया है एक साल के अंडर में। मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग बप्पी लहरी के आवाज़ में एक सॉन्ग और हम सब मिलकर सुनेंगे।

इतना कमजोर मत बनो, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए।

मेरे नसीब में कोई नहीं। ये गीत दोस्तों जो मैं पेश करता हूँ, आप ये फिल्म जो देखे होंगे, हेमा मालिनी का फिल्म है और उन दिनों में टॉप एक्ट्रेस थी हेमा मालिनी। आप जानते हैं हेमा मालिनी का शादी नहीं हुआ, लेकिन धर्मेंद्र से उनका शादी हुआ है।

Ja, Pika, heb je steeds een vaarhond in de stang radio op zo'n hippogram, Gito ka Sangam, Rajan ke saad. Dunia me logo ko dhoka kabhi ho jata hai. Mijn sosta ho, dunia me har ek insaan ko dhoka jo ek bar hoga. Ji ha, dosto, har ek insaan dhoka dunia me jo ek bar khaya hoga. To, R.D. Burman ka song hai, Rajesh Khanna Mumtaz film mein kaam kiya, aur aap jante hai, superstar Rajesh Khanna. दोनों में एक रजेश खन्ना के अलावा एक दूसरा स्टार नहीं था जो इतना भीड़ भड़का से अपन फिल्म पेश करते थे. अब मुमताज जो कदम रखा फिल्मी दुनिया में तद्दारा सिंह के साथ वो काम करते थे, तो उसके बाद ये भी आगे बढ़ना चाहता, लेकिन बहुत से फिल्म प्रोड्यूसर्स इन्हें नहीं लेना चाहता था. सोचा था ये दारा सिंह के साथ फिल्म बनाते हैं, एक दूसरा अलहदा तरह के फिल्म है. फिर भी जब ये कदम रखा दोस्तों मुमताज, तो उन्हें आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते चला गया एक टॉप एक्ट्रेस भी थी उन दिनों में. रजेश खन्ना एंड मुमताज का फिल्म दुनिया का सॉन्ग है, दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता था.

0: आंखों में यारों का दिल खो जाता है।
1: दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है दोस्तों, एक गायकी है ये है दोस्तों, वो गायक जो अपने मीठी आवाजों से फिल्मी दुनिया में हर एक लोग को पागल बनाया, ये है पागल रखा पागल बना के छोड़ा, वो थी लता दीदी। जब फिल्म वो कौन थी बना और ये गीत जब गाया लग जा गले फिर ये हंसी रात हो न हो, तो फिल्म प्रोड्यूसर ने कहा ये गीत अच्छा नहीं लगता है, फिर भी लोग के कहने पर ये गीत रख दिया इस फिल्म में और ये गीत जाकर एक हिट, ये सॉन्ग जो है लग जा गले एक प्राइज भी पाया इसी फिल्म में। हम सब मिल के सुनेंगे नाइटिंगेल लता मंगेशकर के आवाज़ में ये सॉन्ग।

लग जा गले के बाद दोस्तों फिल्म दीदारी यार, फिल्म दीदारी यार एक फिल्म जो जितेंद्रा ने खुद लिखा और उसमें काम किया ऋषि कपूर के साथ। जितेंद्रा ने राफी का सॉन्ग इस फिल्म में प्लेबैक किया और एक्ट किया और ऋषि कपूर किशोरदा का गाया हुआ गीत फिल्म में एक्ट किया। तो बात यह है दोस्तों, ये फिल्म बनाते बनाते बहुत दिन लग गया, फिर भी फिल्म के शुरुआत में जब बातचीत हुआ तो 4000 फिर दर्शन के बातचीत था एक इस फिल्म में गीत गाना गाने के या गाना पेश करने को। तो राफी साहब को 4000 मिलता, किशोरदा को भी 4000। फिर भी जो ये फिल्म बनते बनते कई साल बीत गया, जब फिल्म तैयार हो गया तो जितेंद्रा ने अपन मैनेजर से कहा जाओ किशोरदा से बातचीत करो कितना पैसा चाहिए उन्हें देने के। तो किशोर कुमार ने कहा मुझे 20,000 रुपये चाहिए। तो जाकर जितेंद्रा से कहा, जितेंद्रा 20,000 रुपये दिया और जाकर किशोर कुमार को दे दिया और फिर 20,000 दिया जाओ इन्हें राफी साहब के दो दो। तो राफी साहब के जो पैसा 20,000 लेके गया तो राफी साहब ने पैसा देखा और 4,000 जेब में रख लिया, 16,000 फिर दे दिया मैनेजर को, जाओ जीतू को ये पैसा दे दो। तो वैसे तो जितेंद्रा और राफी दोनों दोस्त थे और वह उसी दिनों से लेकर जब तलुक राफी साहब तीयत था तब तलुक जितेंद्रा और राफी एक बड़े दोस्त आपस में थे दोस्तों। और आप जानते किशोर कुमार के हरदम पैसा काम रहता है, इसलिए कि उसका शादी 4 बार हुआ और राफी साहब को शादी उसका शादी राफी का ब्याह तो सिर्फ दो बार हुआ, लेकिन किशोर तो ही माल जैसे तो चाहता है एंकल तो ही माल फिर दर्शन आँख दर्शन ले के मारू दिन तक दर्शन लेके जेब में रख लिया। उसी फिल्म का एक सॉन्ग मैं पेश करूँगा, फिल्म दीदारी यार का सॉन्ग है किशोर कुमार एंड लता, दोनों के आवाज़ों में आप सुनेंगे।

जीते हो किसी ने देश तो किया, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज के लिए इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है। सुनने वालों के सेवा में सादर सा प्रेम, नमस्ते, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है, www.faunfm.nl पर, वीफी रेडियो और इंटरनेट रेडियो पर। जो बीमार लाचार्य तंदुरुस्ती दुआ के प्रार्थना है, जिनके घर में कोई शादी या कोई भी उत्सव हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयाँ पेश है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम यहाँ से शुरू हो रहा है, इस उम्मीद के साथ आप हमारा साथ अवश्य देंगे। आप जहाँ भी होंगे, जिस हाल में भी होंगे, आप सबको हृदय से स्वागत किया जा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। मैं हूँ आपका सेवक गंगा, और कुल घड़ी तक हम आपका साथ रहेंगे। उम्मीद है आप हमारा साथ जरूर देंगे।

दिल की बातें दिल ही जाने हैं, लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार मिलके दोनों आपको सुनाए हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। और फिल्म तो बहुत प्यारा था, रूप तेरा मस्ताना 1972 का नेहन तीन त्वेन सैफ तक का ये फिल्म हम आपको दिखाए नहीं, फिल्म के गीत आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, जी हाँ, गुलाम मोहम्मद के साज पर। जी चलो सुनते हैं रफ की आवाज़ में निखते एन एस एस तक का ये गीत, क्या ख्याल है।

उनका बढ़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया। रफ़ी की आवाज़ में हम आपको सुनाए ये शानदार गीत ओवर फाउन हिंदुस्तानी और राज्य।

अरे गा तेरे संग या मेरे संग मेरे साजना, हमने पेश की एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी आपको सुनाए फिल्म अभिनेत्री में से निकाल। जी हाँ, चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और

जो तुम हंसोगी रोएगी दुनिया या हंसेगी दुनिया, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए फिल्म कठपुतली में से निकालकर हम ये गीत पेश किए ओवर शाह फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और देखते हैं निगति एन सैफ दख का ये गीत है। चलिए देखते हैं अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो कौन सा है। जी हाँ, चलो सुनते हैं ये गीत। हमने चून किए लेकिन सुना नहीं, चलो साथ मिलकर सुनते हैं। आप सुनोगे, मैं भी साथ सुनता हूँ।

लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए तुम हमका ऐसा का देखत लैला। जो लोग चून की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है।

हवा भी ज़्यादा ज़्यादा है। रफ़ी साहब और लता जी मिल के आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की। और चलो देखते हैं अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, फिल्म फिल्म फिल्म फिल्म मन मंदिर। फिल्म मन मंदिर में से निकाले हैं निगद एन सही बंदक का ये गीत, 1971 का ये गीत, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। हमने एक दो बार कहा था लेकिन एक बार फिर कह देते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारे लाल एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है, जी हाँ एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है जो बहुत सारे फिल्मों में काम किए, सभी म्यूजिक डायरेक्टर से ज़्यादा, करीबन 455 या 54 होगा, 55 या 54 यानी 405 तक या 505 तक, बहरहाल रोंद 405 तक, 405 तक फिल्मों में इन्होंने म्यूजिक दी है।

जादूगर मेरे सैया एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी निगद ए नसीब का ये फिल्म है मन मंदिर में से निकाले हैं एलपी के साज पर यानी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। चलिए अगला गीत हमने प्लेयर में रखे हैं लेकिन ये गीत हमने सुना नहीं, यहाँ कुछ जिक्र हो रहा है चल सिनेमा देखें या दिखाएं, पर बहरहाल एवरग्रीन किशोर कुमार और देखते हैं आशा जी फिल्म वक्त में से निकाले हैं। चलो सुनते हैं ये सिनेमा दिखाने का सिलसिला या देखने का सिलसिला।

आशा जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाएंगे ये होटल जाने का सिलसिला और बाजार जाने का सिलसिला और सिनेमा दिखाने का सिलसिला हम आपको सुनाएं। बहुत सारी सिलसिलाएं हम आपको सुनाएं और फिल्म का नाम हमने बताया था वक्त। जी हाँ वक्त, लेकिन पूरा नाम हमने नहीं बताया, फिल्म है वक्त का दीवार। आप सोचोगे गंगा वक्त में तो ऐसे गाने नहीं हैं, जी नहीं, फिल्म है वक्त की दीवार। तो वो तो फिल्म दिखाने के सिलसिला था, अब यहाँ डूबने मरने की बात हो रहा है तो चलो सुनते एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी ये डूबने मरने के क्या सिलसिला है।

हाँ हाँ तो आपने सुने चल दरिया में डूब जाएं के सिलसिला हम आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप चुने मैं चला रहा हूँ लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर प्रेम कहानी में से निकाल कर निकली फैफ सैफ दख का ये गीत। चलिए आपको सुनाते ये सेमी क्लासिकल इस तरह से। रफी साहेब सुमन कल्याणपुर।

हाय रे सावन बीता जाए, ये शानदार गीत रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर आपको सुनाए ओफर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। जी हाँ, माई तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, श्री

हमें क्या लेना, हमें क्या लेना, फिल्म पारस में से निकाले हैं, मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी मिलके आपको ये शानदार गीत सुनाए हैं। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, ये गीत मैथ मुकेश के बाद एक बार फिर मैथ मुकेश है, इस तरह से

0: पंछी रे वो पंछी, रफ़ी साहब और आशा जी आपको सुनाए हैं और फिल्म हरे कांच की चूड़ियाँ में से निकाल कर हमने चलाए हैं। म्यूजिक डायरेक्टर तो नहीं लिखा है लेकिन साथ से पता चलता है कि शंकर जयकिशन के साथ पर हम ये गीत आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत, तो क्या ख्याल है, ये धमाकेदार ये है।
1: घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए
0: क्या
1: थोड़ी

क्या बात है, ये शानदार प्यारा दुएत हम आपको सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं मैं चला रहा हूँ। आप सबका स्वागत करते हुए प्लेन में हमने गीत रखे हैं। कहाँ गया? जी हाँ, कहाँ गया? हाँ, ये मिल गया। चलिए देखते हैं, माइत मुकेश, माइत मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, सोनिक ओमी के साज पर फिल्म बेटी में से निकाला है इस तरह से।

0: ये किया किया रे दुनिया वाले फिल्म में से हम निकाले 1969 का ये फिल्म है और हमने पेश की उफरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत, जी हाँ, सोनी कोमी के साज पर फिल्म बेटी में से निकाले हैं। अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, चलो प्रेम पुजारी की ओर बढ़ते हैं। प्रेम पुजारी में देवानंद का कास्ट है और वहीदा रहमान, तो ये प्यारा गीत हम आपको सुना दें। बहुत ज़बरदस्त गीत है, कौन संग्रेस ये गीत नहीं गाए हैं इस तरह से।
1: डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स सारेगामा.com से।

जी लता जी, आपको सुनाए रंगीला रे फिल्म प्रेम पुजारी में से हमने ये गीत निकाले हैं। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं। हाँ, फिल्म वो दिन याद करो, फिल्म वो दिन याद करो में से निकाल रहे हैं द मैन विद गोल्डन वॉइस और लता जी।

मोहब्बत की कहानियाँ सुनाने लगे है जवानियाँ। ये शानदार गीत हमने पेश किए ओवर फाहौन हिंदुस्तानी आप चुन है फाहौन हिंदुस्तानी रेडियो पर। जो लोग चुन की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए मैं चला रहा हूँ, आपको चला भी नहीं रहा सुना भी रहा हूँ, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर फिल्म अनीता में से निकाल कर। ये एक डरावनी फिल्म थी लेकिन इतना डरावनी नहीं थी, बहरहाल थोड़ी बहुत डरावनी थी। फिल्म अनीता में से निकाल कर लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ।

ना बाबा ना बाबा पिछवारे बुढ़ा खांसता लता जी आपको सुनाए लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर फिल्म अनीता, फिल्म अनीता में से निकाल कर हमने चलाए हैं। और अनीता जी के बाद, नहीं फिल्म अनीता जी के बाद चलो हम सुनाते हैं आपको ये गीत।

लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार, सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं। जी हाँ, क्या ख्याल है, इस तरह से आ रहा है रवि साहब की आवाज़ में जाना पहचाना गीत, जानी पहचानी आवाज़, जानी पहचानी संगीत है।

वाह क्या बात है, ये छेड़ खाने वाली गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलते हैं, मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आशा जी के साथ एक बार मुस्कुरा दो निख दी तुम सी में। तो 1972 का ये फिल्म, जहाँ तक मेरा ख्याल है इस फिल्म का म्यूजिक दिया गया है ओ पी एन नैयर के जरिए, जरा देखो तो सही है। जी हाँ सही है।

हमने पेश की ओपी के साज पर। अगर ओपी ही से हम चल रहे हैं तो लीजिए एक बार फिर ओपी नैयर के साज पर इस बार आशा जी ये धमाकेदार गीत फिल्म होंगकोंग।

नहीं गनती तो ये सस्त 1962 फिल्म हांगकांग में से निकाले हैं और ये गीत चला ओपन एयर के साज पर हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलो देखते हैं प्लेयर में हमने ये गीत रखे हैं तो क्या ख्याल है। इस तरह से मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।

लता जी की आवाज में ये शानदार गीत हम आपको सुनाए ऊपर फावनी रस्तानी रेडियो फिल्म लुटेरा में से निकाल कर। लेकिन ये पता नहीं कि उन दिनों या पुराने ज़माने में भारत में सही पिरात थे या नहीं, यानी समुद्री डाकू थे या नहीं, पता नहीं। समुद्री डाकू का ये फिल्म है लुटेरा, जो इंडिया ने बनाए कभी और हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलो देख

मैं मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए, फिल्म दिल ने पुकारा में से ही निकाल कर हमने पेश की निगेटिन सेशन सेस्त का ये गीत, और हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और चलिए अगला नंबर हम पेश करने वाले हैं, तो क्या ख्याल है, जी हाँ आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो चलो सुनते हैं। फिल्म जंगली में से निकालने हैं शंकर जय किशन के साथ पर, ये शर्मिला टैगोर और शमी कपूर का कमाल है।

दीवाना हुआ बादल, ये शानदार गीत हमने पेश की। लेकिन शुरू में हमने कहा था फिल्म जंगली, लेकिन फिल्म जंगली का नहीं है, लेकिन ये है फिल्म कश्मीर की कली की। लेकिन बीच में हम रोकना नहीं चाहते थे, इसीलिए नहीं कहा। फिल्म कश्मीर की कली में से निकाल कर ओपन एयर के साज पर था ये, और हमने पेश की ओ फरफा हो हिंदुस्तानी रेडियो।

एक बात पूछूं या बोलो, लता जी और रफ़ी साहब मिलके आपको सुनाए फिल्म कठपुतली में से निकाल कर नीख दें एने सही फिल्म तक का ये गीत कल्याण जी आनंद जी के साज पर हमने आपको सुनाए हैं। ये अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है? चलो हम ये आपको सुनाते हैं, इस तरह से आ रहा है।

हाँ जी, उदित नारायण और साथी मिलके आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश किए मोहब्बत में से निकाल कर। जी हाँ, यतीन ललित के साज पर हमने पेश किए फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है, ये है इस तरह से आ रहा है।

हाँ जी, क्या बात है, एवरग्रीन जी नहीं, द मैन विद द गोल्डन वॉइस, द मैन विद द गोल्डन वॉइस आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाहोन हिंदुस्तान। तो अगर आप तत्पर हैं, आपका हृदय से स्वागत है। आप जहां भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, जिस देश में भी होंगे और कार्यक्रम फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो का सुन रहे हैं, और वीवी द्वारा वहाँ पर और इंटरनेट द्वारा आपका हृदय से स्वागत है। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जात, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरिए नाम सच्ची काल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश के समाचार सुनाना है, हमारा काम यही है, हमारे मोहब्बत भरी प्यार के पैगाम। दोस्तों अभी आप लोगों एक प्रोग्राम को सुना है, वो है हमारे कुलेखा साथी गंगा जी से, और हमें आशा उम्मीद है कि आपको उसका प्रोग्राम जरूर अच्छा लगा होगा। आज हो चुका मंगलवार दोस्तों, 16 जूनी है और घड़ी को दिखा जाए तो 8:06 शाम को हो चुका है, मंगलवार है 16 जूनी। और जैसे आपको पता है हर मंगलवार को हमारा प्रोग्राम लाइव हम चलाते हैं, तो अभी हम आप लोग को देश और विदेश के समाचार एक घंटा आप लोग को हम सुनाएंगे करीब 7 तक। तो दोस्तों हम तुरंत तुरंत और तुरंत चलते हैं, वो है सूरीनाम के ओर। हमारी जनता, हमारे प्यारे प्यारे जनता, आप लोग जानो है जब से NDP का रखेरिंग आयल है दोस्तों, जब से NDP का रखेरिंग जैसे आयल है तो इखरोन कॉन्फ्रेंसिंग बारे में आप लोग जानो है, जो चांद सतोखी ने बनाए थे अपने जमे पे कि लोग अपना जो जमीन है यानी लांटी जगह जो उसको मिला है वो खरीद सकते हैं लांटी से, यानी एकन दोम बना सकते हैं। तो इसमें करीब 15,000 लोग अपना अपना जमीन को और यानी कि जाकर खौन कॉन्फ्रेंसी का एक दोम कर लिया, लेकिन जैसे ये नया रखेरिंग आयल है भाई खलैक ओके स्टॉप कर दी इसकी दर मखेल मान लेट स्टेर कर नोक बेस्टमैन से जो मिनिस्टर हैगा खेबीबी का, वो ये कह दिया है कि बोले कि जितना आदमी जगह पाई से बोले पैसों बोले सब लौटाड़े जो ऐखन दो में बोले वो फिर लांटी के हो जाएगा, तो एकर बारे में बहुत घीचा तानी भेल है। तो एंडलक वो कहा बोले मिनिस्टर कहा बोले है फन खेबीबी के, और वो बोले है बोले ना बोले कि बतिया ऐसे ना है बोले जो आदमी के रोंत हो चुकल है जेके एखन दोम कागज मिल चुकल है सगरो तीकन हो चुकल है बोले ओके हमें ना माखेगा तुरख द्राई करे बोले रखा नहीं बोले बाकी जोन के अभी तुरख द्राई ना भइल है और पैसा तो भर दे बाट मतलब कि जेकर अभी ना रोंत भइल है और तू पैसा भर दे बाटे का बोले है सेंट्रल बैंक में बोले ओकर पैसा बोले हम तुरख देवे जो तो सखवा दोरो ना जाए। तो ई रखेरिंग NDP और गैगरी रिस्लांद के रखेरिंग हैगा और सब क्वालिटी जितना क्वालिटी के आदमी है ओ मा पेयल है बेफर दुनिया भर के भैया है लखरूप है सब मिलजुल के ये सब काम करी इस वहाँ क्वालिटी में खाली बपाल NDP ना करे है सब कोई एक बारे में NDP के और नेक आंध्र पड़ता है जो सामो वैर करे सब एक बारे में देखो क्या हुआ है।

पैसा ना मिलल है जो लियोस बैरख के और का बोले कमोवेन के बहुत हौदर से गा और बोले ना मेर ना पांच बड़े सब्सिडी पैसा बोले हम नो ना पहले उसे ऐस करे मंगर के कि जो तने मिनिस्टर है ते जी ते के रहीमोन लानफेल फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के बोले है उसे के चाहे भरे के और एमा एनडीपी के पार्लियामेंटारी है अनसडी फोर सीटर हैगा यानी कि फी बीज दी के यानी कि ट्रांसपोर्ट के बुटियन के बोले सेंड बोथ होल्डर्स नी आंखसलोटन सेंड बाय दिस वेरिनेकिंग द मेज गोल्डलक बोथ होल्डर्स इज नाम दिस ऑनलाइन वर्ड्स आई केयर ऑफ केयर डिस्क्रिमिनेट व्हेन इट अनकम्स ऑफ द बतानिंग सब्सिडी ते एनडीपी के दे आना बोले है और बोले पांच बरिस से बोले कि फरहुकिंग बेर फोर रखेरे एन ही रोये सेंट आन सब्सिडी एंड यू से एन यार फेर्दर और बोले है मिनिस्टर खबेल्ट बोले बेलकली है और बोले है गा सादी बोले है सो मार के बखरुजिर महांदलिंग में कि सबके पैसा कब भराई कैसे भराएगा तो जनता Suriname is heel erg moeilijk, mensen. Ze hebben geen geld, net als de vorige jaren, en ze moeten alles gaan doen. Ampelun jano, jetran mi jungle angel ja, bolem jala muru kriki, bhaiya ketran mi ya muru kriki is lakdi nikare, ketra admi sona khode bhaiya muru kriki jungle hai binalan thega. Hum na gali bhaiya baki jaisi ya photos dikha hai ki admi lo sona hona nikare baki sipahi bole hai surjati bole hai bole muru kriki mein jitna admi ke hua concession hai bole sab ke chahe chhod ke bhag jayegi sipahi bole muru kriki शुक्रवार 19 जून तक सबके चाहे अंतरिम हो जाए के ब्रोकोपोंडो मुरुक्री की कौन सी जो ब्रोकोपोंडो में और बोले मुतन है ट्रेन अतलक 19 तारीख जून के 8 बजे सवेरे फॉर लीडर चाहे अंतरिम कर लेके एक बोले है अंतरिम फन कोर्स पॉलिसी सिरनाम री ह्यूमैनिटी नाम बोले उखबितवा जोन हैगा कौन से सी रूसवेल गोल्ड माइंस के Bolle het gebied maakt volgens de aanzegging deel uit van de concessie van de Roosevelt Gold Mine. Kehe. De aanwezigen worden opgedragen hun kamp direct af te breken, alle materialen en persoonlijke bezittingen mee te nemen en het terrein daarna te verlaten, mensen. Toen ze paaien op het team deze, bolle toen hij riskeert dat het gebied zonder verdere waarschuwing wordt ontruimd. Op bolle het terratare juni mee, Brokopondo uitgegeven en wordt door de korpspolitie aangemerkt als een formele, rechtsgeldige en bindende aanzegging. De waarschuwing wordt druk op de aanwezigen van het concessiegebied flink opgevoerd. Ze hebben tot vrijdagochtend om te vertrekken. Voordat politie en leger kunnen overgaan tot actie, mensen. De admiron hoa pe concessie paise bhaiya aur gold and mine kehega to ab sab ki jahega chhod dewe ke jaghaiya dosto America aur Iran mein under handling hue hai Strait of Hormuz फ्राइडाग के चाहे खुल जाए के सुख के आने वाला सुख के चाहे खुल जाए के फरीनक दस्तात इन ईरान सोंदाग के रात के फ्री अकॉर्ड हो गए है पाकिस्तान से प्रीमियर शबाज शरीफ मेल करिसेगा बोले है अमेरिकन से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बफेस्टक कर दी से ईरान के टेलीविजन पे कि ईरान अमेरिका हेव गडोंगन है फ्रीडस अकॉर्ड एक्सेप्टेरन द ईरानी स्टेट टेलीविजन मेल दैट ईरान द वीएस हेव गडोंगन हुआ के टेलीफोन हैगा कि ईरान द्वेंगी करिसेगा अमेरिका के यू स्टॉप करके Een van de belangrijkste gevolgen van de tussentijdse akkoord is dat straat Hormuz in Sukruwaike in Demse Kuljaike. De vijfde van de olieproducten gaan door deze zeestraat door. De Iraanse blokkade zijn de brandstofprijzen wereldwijd fors gestegen, mensen. Obolega, jape, daaronder valt die van de voorwaarden dat de doorvaart 30 dagen na de orde teken weer op een niveau van voor de oorlog moet zijn. Als tegendien zou VS de maritieme blokkade van Iraanse haven beëindigen, want Amerika bij Iran kesab havens blokkeer kareba. Iran zou verrijkt uranium gaan verdunnen. बोले हैगा जोन जोन यूरानियम के बारे में बोले ओके पातर करेगा अब बलंगरई के कनेल पे इसे फरेक्ट यूरानियम फन ईरान द फेस इफ दार
grote problemen mee. Trump zei eerder op zondag raadkeer. Bolle geen haast te maken met het verwijderen van het nucleaire materiaal in Iran. Hij kondigde strenge inspectie aan zonder details te geven. Bolle hamlo inspecteer karab kichi yonjo to bomben heette. Maar ja, uranium ze bolle hamlo inspecteer karab aik takab. Wachten op reactie van Israël en Hezbollah. Hoewel Israël of Hezbollah abbetaklade niet direct bij de onderhandeling betrokken zijn, staat in de documenten dat er een einde aan de oorlog op alle fronten komt, inclusief de aanvallen op Libanon. Toch heeft Israël herhaaldelijk verklaard Hezbollah te blijven aanvallen. Zondag waren er nog aanvallen over en weer mensen. Amerika, Israël, februari is het blijven. Grootschalig aanval door de hele Iran. Sindsdien zijn er aanvallen over en weer in de Midden-Oosten. VS en Iran praten al maanden over de mogelijke vredesakkoord. लेकिन तरी से और सस्ता में अब वे 2 यूरो 20 है यहां पे हमारी जनता अब वे यहां पे महंगा है तेलवा मींस सूरीनाम में भैया परमेश्वर बड़ा जोर गुस्सान है और ये परमेश्वर एनडीपी के उधर का बोले गया दिन गुस्सान है बोले हैं 1.5 घंटा से 2 घंटा लेक उस पार्लियामेंट में बैठ के अगोरी से फरखादर करके और रखेरिंग बहुत अलातिक आयल है बोले रखेरिंग बहुत अलातिक आयल है और बोले परमेश्वर हाल फ्लिंक ऐना द रखेरिंग लात उस मेर दन अंदर हाफ यूर वक्तन बोले हम लोग के बैठ के अगरवाई से भैया परमेश्वर 1.5 घंटा रखेरिंग वहां के अगुल्ले बाटे तब तू लोन इतना बड़का हैरी माक करे है सूरीनाम में आदमी जोन खेत और पहले तो ही लोग के समय पे अनफ्राक करत रहा मर गए अब जगहिया ओकर नाम पेनाइल है 40 बरिस पे 50 बरिस उसप अगोरी से बरिसन से अगोरी से अबे कितना आदमी अगोरे कर खेतवा का गचुआ कहां कब मिलेगा क्रोन फ्रंट कॉन्फ्रेंसिक तो लो स्टॉप कर देले बाटे आदमी अगोरे है कि कब ई दौर चलेगा अतुलन अंदर हाफ यूर में चिल्लाई के शुरू कर देले है जनता ये जा है बेरखल स्टंप में जनता ये कहीं अस्प्राग जा है त 1.5 घंटा ना दिन दिन भर सोम्स अगोरे है और कोप क्राक फॉर स्टर्किंग आदमी रोज अगोरे कब हमा पैसा स्टोर्ड होई ओकर बारे में दस तो हेलमाल नेक्स्ट मने परमेश्वर लेकिन ई वक्ती वाला चियुआ जोन है सूरीनाम में बहुत ज्यादा भैया जे कोई से अस्प्राक करियो 10 बजे तो 12 बजे आवे है और सोस बेलवा न करी सोस आइबे न करी दैट हैपिक सेल्फ मी कमांड मींस फिर भी गैली करवाए भैया तीन तीन चार चार गो अने अने इमर से आदमीन कोनो आवे कोनो आइबे न करे कोई बेलवे न करे भाई ऐसे सूरीनाम के चाल है हमारे जनता तो कौन चीज जतुलो रखेरें के आदमी अस्प्रक से काम ना करे है तो जनता बिचारा हमार का करेगा Jullie moeten de goede voorbeeld zijn over afspraken in het land Suriname. En dan zijn jullie zelf niet mensen. De abhaya permeser, abhaya gayadin, or orlo kwam pe jon bait kya goratra. Isa bahut gusan hai. Hiya batawe go wet stas bakhrooting baninga. 2026 ke openbare vergadering hoiga. 10 baje, baki saban 12 baje suru kari se bhaya. Het blijkt dat de parlement meer dan anderhalf uur heeft moeten wachten op de regering. Ik er waren mee fractieleider NDP ke Parmeser Ramin Parmeser bole commissie voorzitter John Hega wetsproduct ke parlementariërs bole Hega weken lange dagen hebben gemaakt bole en dan laat de regering ons meer dan anderhalf uur wachten waarbij het geen nieuwelingen zijn mensen die weten dat bij de begrotingsbehandeling een duidelijke afspraak is dat er minimaal 7 leden van de regering aanwezig moeten zijn van 7 van de 19 omdat ik de vicepresident en de president meetelt, sprak per mij zeer geërgerd. Ah, bhaiya. To ik er baar hem toe hem bata de li hem. Oh, bole, in alle ernste die kunnen we niet hebben. Bole, ietsje na hoe seke hem. Ik heb zelf voor de president en vicepresident president het schema gestuurd. Bole, toch zeg maar laat ik eilen. We hebben nog een hele maand te gaan. Permeester vindt het
frappant dat heel wat ministers vaak dringend aandacht hebben gevraagd voor de aanvang van de begrotingsbehandeling om hun beleid verder te hebben en implementeren mensen of zelf laat ik je eigen dus doen. To je baat hai hamare pyare pyare janta. Tab dekho bhaiya hum jai hai tari se. En assembleelid Jennifer Fried Samkeur, NDP, heeft tijdens de begrotingsbehandeling vraagteken geplaatst bij de rol van kabinet. Volgens haar moet het kabinet beleidscoördinatie en monitoring en niet de rol van minister overnemen bij het bepalen en uitvoeren van beleid. Toe baat hem mevrouw Vreedzaam bolle he. Oor volgens het assemblee staat Suriname met verwaarde olie en gasontwikkeling voor grote bestuurlijke uitdagingen. Bare mee telke bare mee. Ja pe hem nu sajai ke rakli dosto. Abhi aap log ko hum ekar bare mee batabe. प्यारे प्यारे जनता यहां पे और न्यूज़ मामपुरुष के बताई है यहां लिखल है भैया यहां लिखल है भैया फरागा ले ले चले है ईरान के हुआ के जनता थक गए लड़ैया से और बोले है कि द वेयर स्लॉट अ सिख फ्रॉम फ्लिक्टिंग अमेरिका ईरान के अतवार के जोन संबंध एक मेमोरेंडम फॉर ओवरस्टेमिंग वाज ब्रेक ऑन बेना 4 महीना पर फैयांदलकheden तब eindige 4 महीने से अपना लड़िए भैया और स्ट्रात में 13 में वार में uitgeput is door jaren van sancties en spanningen, heeft de aankondiging van een staakt het vuur weinig vertrouwen gewekt dat de crisis voorbij is, mensen. Toen hoe ik je ta bole 4 maanden ke bole ban hoi, ab bole hij jagadwa okar baad me ka hoi, dat weet de mensen. Zeg Parisa, een student in Teheran ke bole hega die vanwege veiligheid haar voornaam gebruikt en het kan nu werken, maar beide partijen zullen hen ondermijnen op basis van hun eigen belangen. Ze op een eigen belang gaat keren, hamari janta. और आगे हम जाए भैया अरे भैया हम लोग कैफे पे सुरीनाम के ग्रिल रेस्टोरेंट थे भैया हां बोले हैं फेपेर बेज फन से अपना क्रिटिक बेस्टार बखरूचिंग बहांदलिंग तो ये भैया अब मुखोली से बोले हैं फरवेर तेगे द क्रिटिक दी बेज अनफ्राग फन द बखरूचिंग बहांदलिंग रखेरिंग के बोले जोन 11 बजे बोले शुरू भले बोले एंस्ट है बोले ला है स्टेल द रखेरिंग वाज आउट voor 11 uur en niet voor 10 uur, zoals door sommige parlementariërs werd gesuggereerd. De ohike permisser bole he, 2 ghanta, 1.5 ghanta bole laatikal le baate. Aur ee bhaiya bole na, hum log 11 baje bulaya raha, 10 baje bulaya raha. Aur bole hum log 11 baje pahunche to humme jana furukura ka. To this soort mensen, hoe kan je leiderschap hebben als je tenminste je afspraken niet houdt? Je moet tenminste je afspraken hebben, vicepresident bent u. Volgens Rusland heeft de regering het verleden zelf meermaals uren moeten wachten op de nacht. Je hebt niks te maken wat het verleden is, meneer Rusland. Jij bent nu de VP. Jij moet het namelijk zorgen dat die dingen allemaal netjes en correct en op tijd.

मैं तो लाई है कौनची मजेदार लाए ही और उस्तादो के उस्ताद हरीश बालक का गीत आपको हम सुनाए है दोस्तों। तो कुछ आज लोकल सॉन्ग आपको हम सुनाएंगे। तो हम चलते हैं राम प्रसाद राम खेलावन के ओर, वो क्या गाते हैं।

और कठिन भिन्न छोरा। तो ये गीत हम आप लोग को सुना दिए हैं हमारे दोस्तों, उसके बाद हम चलते हैं और पातर मोरे लग्या रॉबी गोगार इस गीत को गाए हैं। चलो सुना जाए।

सुगनवा तू और पांती मोरा ले जान सुगनवा तू। कुछ लोकल सॉन्ग आप लोग को हम आज सुनाएंगे हमारे यारो, तो कुछ बैठक गाना और लोकल सॉन्ग अपने पुराने पुराने कलाकार सूरीनाम के हम याद करते हैं। और उसमें से एक कलाकार थी श्रीमती औधराजी घिसई डूबे उस्ताद हरीश बाल के साथ मेरे साथ साथ श्री राम प्रसाद राम खेलावन और मेरे ख्याल से ढोल बजाए थे रकीब ने। दोस्तों आओ सुना जाए।

और सरजू में करो स्नान श्रीमती औधराजी घिसई दूबे उस्ताद हरीश बालक साथे साथ श्री राम प्रशांत राम खेलावन रकीब जी भी उसमें उस्ताद को उस्ताद है दोस्तों। तो हम चलते हैं उस्ताद देवा के ओर। देवी दीन घोरई इसका असली नाम है और जिसे लोग देवा के जान से जानते हैं, बहुत मशहूर थे अपने जमाना में, अभी तक उसका गीत बहुत लोग पसंद करते हैं। तो आओ चला जाए उस्ताद को उस्ताद देवा क्यों रे।

और कन्हैया कन्हैया पुकारा करे देवी दीन घुराई, जिसे लोग डेबा के नाम से जानते हैं दोस्तों। और इसे पुराने उस्तादों का गीत आप लोग को हम आज सुनाएंगे, उसके बाद हम चलते हैं और बैठक गाना। और उस्ताद वो है जगदीश, जगदीश है दोस्तों। और ये कौन जगदीश है जो गाए है चिरैया बिन बोले, चिरैया बिन बोले, और ये जगदीश गाए है दोस्तों। तो जगदीश का ये सॉन्ग आओ सुना जाए।

और चिड़ैया बने बोले मैं ना जाऊंगी, भैया बोले हम ना जाऊंगी। तो उसके बाद हम चलते ही एक गीत है, ये गीत बहुत मशहूर थे, सूरीनाम देश में बहुत मशहूर गीत थे, और वो है शुकी अक्कल का दोस्तों। और हम खुद ही इस गीत को बहुत दिन हो चुका है नहीं सुना है, और आज रेडियो फाहून के माध्यम से हम आपको सुनाने चाहते हैं, और वो है सुकी अक्कल का ये जोंग है।

als ze maar een goeie is, dan gaat het om wie dan ook mensen. Tja he, jo bhi mile, lekin acha hona chahiye. To ye baat hai, suki kal ka zong, dosto, koi zamana mein, aur wo ani bodha. शायद पुराने लोग की तो पता होगा, हमारा यंगर को शायद मालूम बहुत कम होगा, लेकिन आनी बोधा भी अपने ज़माने में अपने समय पे बहुत पॉपुलर थे भैया। कौन ऐसन जगह पे आनी बोधा का गीत नहीं होते थे, तो आप लोग को हम चलते हैं एक गीत की ओर। फन आनी बोधा का ये सॉन्ग है।

भी नहीं, ये कुछ पुराने क्लासिक ओल्ड यानी कि उस्तादों के जो उस समय पे कोई समय पे ये सब बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे दोस्तों। उसके बाद एक गीत को हमारा जो है भिखारी जी भी गाए थे, और वो समय पे कौन लोग है जो इस गाने पे नहीं नाचे थे या गुनगुनाए थे। तो हम चलते हैं उस्तादों के उस्ताद, और वो है भिखारी। भिखारी सॉन्ग को गए थे, आओ सुना जाए कौन से सॉन्ग। आज जैसे शुरू होगा आपको तो पता चल जाएगा।

भी छेद लेते हैं दोस्तों, स्कॉर्पियन भी लोग कहते हैं, और जो स्कॉर्पियन जब छेद लेंगे भैया तब तो उसको दवा दारू कुछ और है, और जब बरैया छेदी उस तो फिक्स चलेगा, और फिक्स के बाद में स्लिंगोली चलेगा। तो दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं और वो भी हरिदत्त जयराम की ओर, और ये ना है हबड़ा कटावे वाला, ये कुछ और है दोस्तों, और सुना जाए।

दोस्तों छोड़ दे पीना शराब के बातचीत है, हम एक गीत और जाते हैं सनातन की ओर।

ए बालमुआ के बालम और बालमुआ के बालम के बाद हम क्या लाते हैं दोस्तों, भोजपुरी सॉन्ग के मूड में आंचम हो गया है। फिर से एक और हो जाए शिवानी सिंह का।

और पवन सिंह पावर स्टार पवन सिंह का भोजपुरी सॉन्ग है। अब लोग को हम कुछ मिक्स मक्स चलाएंगे, कुछ भोजपुरी कुछ बॉलीवुड सॉन्ग। और यहाँ पे नील कमल सिंह और क्या सुनाते हैं लड़की, ये लड़की क्या है दोस्तों, लड़की दीवानी।

दीवानी नील कमल जिंगा ये सॉन्ग है। तो अगला गीत क्या है दोस्तों, पवन सिंह अस्यल्पा राज का ये सॉन्ग है।

और दोस्तों पवन सिंह का ये सॉन्ग है जो आप लोग को सुनाए हैं और आगे चलते हैं तमन्ना बतिया। तमन्ना बतिया क्यों?

और आज की रात क्या होगा, रात छोड़ो चलो हम लोग बम्बई का रानू देखा जाए।

ही देंगी। बोले पहले सॉरी तो बोल। तो सॉरी कब बोलेंगे दोस्तों? जब सॉरी के कुछ काम, तो सॉरी बोलना कब? जब आप कुछ कसूर करेंगे तब

आँच में जाके पता चला है कि चोली के पीछे क्या होता है। चोली के पीछे दिल होता है दोस्तों, और दिल तो सबके पास होता है, लेकिन किसी को उजला दिल होता है,

और तो ये आपका कौन सा दिल है आपको खुद मालूम होगा, लेकिन ये चोली के पीछे और कुछ दिल है दोस्तों। तो यहां से हम अगला और हॉट वन और कुछ नाचनी स्विंग के गीत हम आपको सुनाते हैं। क्या है

और नमकीन हो गई है, नमकीन हो गई वो, और पानी पानी का ये सॉन्ग थे हमारी यार वो, और हम चलते हैं अगला अगला हॉट वन सॉन्ग की ओर। और वो क्या है, वो क्या है, चोली के बांति, चोली के बांति क्या आता है, क्या आता है।

और गुप चुप गुप चुप गुप चुप गुप चुप क्या होता है, गुप चुप में बहुत कुछ होता है। और जाए के और सो गए किसी और जगह, जहां पान नहीं सोना था।

और दारू पी के डांस करे और डांस करे, बिना दारू पिए यहाँ लोग डांस करते और गीत कहते हैं कि दारू पी के और डांस।

छम्मा छम्मा कौन है, किसका नाम है छम्मा छम्मा, और छम्मा छम्मा के बाद तो हम और आगे चलते हैं, और वो क्या है।

0: और 9 NT मारे बेरी यू फन हैप्पी ऑल टेट N3 सेंसेशन
1: एक नशा से चढ़ता है
0: ऑन रेडियो 4 1

नींद के मारे में क्या क्या होता है दोस्तों, कुछ गलत मत कर देना, नींद में बहुत कुछ हो जाए। दोस्तों मुकेश भाई थी, मुकेश करोड़ों का दिल चुराने वाला, हार्ट ऑफ मिलियंस, और वो है माई थी मुकेश का ये सॉन्ग है। शंकर जय किशन के साथ में हसरत जयपुरी शैलेंद्र।

लगी जाए। और ये गीत के बाद हम चलते हैं और एक सॉन्ग की ओर, ओहे करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ मिलियंस, और वो है माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है। दोस्तों आओ सुना जाए क्या है ये।

तुम बदल न जाना, मौसम की तरह मूवी के नाम था तलाश की बात में हम जाते हैं। मूवी के नाम है राजा निघंटिन 105 निकट का ये प्यार भरी सॉन्ग अलका याग्निक और उदित नारायण का ये मीठा मीठा लवली प्यार भरी और ये गीत है।

और जरा फिर से तुम जरूर कहना कि आपकी जोनी का प्रोग्राम कैसे लग रहा है।

तेरे पास और रहना, तेरे दिल मेरे पास रहना, उदित नारायण आलका याग्निक का ये जोंग है।

और तेरे दिल मेरे पास भी अब रहने दो ना। अगर जे तेरे दिल मेरे पास है तो उसको क्या लोगे। एक बीच में ओल्ड एंड गोल्ड की सॉन्ग भी आप लोग को हम सुना देते हैं। ऐ हुस्न परी चेहरा, शरबानू राजेंद्र कुमार का ये सॉन्ग है, फिल्म है, और जिसमें मूवी का नाम है, यहाँ पर बताई गई है, इज ओल्ड इज गोल्ड, अमन जोंग का ये गीत है। पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये गाया हुआ गीत, आओ सुना जाए।

पर्सन दो राजेंद्र कुमार शेरबानु अमन सॉन्ग्स का ये गीत है, एक ओल्ड एंड गोल्ड भी इसमें हम लगा दिया है। साथ साथ हम चलते हैं जोनू जोनू और जोनू निगम की ओर चलते हैं, जिस नई खंत क्रिया यारा नई खंत का हिट सॉन्ग है गोविंदा जी इसमें क्या करते भैया, किसी को दुल्हन बनाते हैं। अगर भी अपन दुल्हनिया के लिए कुछ गीत गाना चाहते या बजवाना चाहते हैं तो यहां सुनिए कौन सा गीत आपको चॉइस करना चाहिए।

समझ गए ना कि जिद मत करना, अगर शादी बनाना है तो उसी से बनाइए, नहीं कुंवारा मर जाओ और नहीं कुंवारी मर जाओ, शादी बनाना है उसी से बनाओ जिससे दिल लग गया है। दोस्तों एक और ओल्ड एंड गोल्ड के ऊपर हम चलते हैं, और ये है सुरहरी दार गर्दन कोयल सी है आवाज, और ये है सैरा भानु राजेंद्र कुमार का, ये फिल्म है पद्माश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत है।

और सुराही नार गर्दन कोयल सी है आवाज। और ये ओल्ड एंड गोल्ड के बाद में हम चलते हैं प्यार दिलों की।

मोहब्बत हो जाती है मेरे यार। मौफी के नाम था हीरो नंबर 1 फन्नो नहीं खतिन होंदित एंड सी फन नहीं खतर।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

दोस्तों इस गीत का है देखा है पहली बार और मूवी के नाम है जांजन अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम का रोमांटिक सॉन्ग।

और मूवी के नाम है साजन और कुछ हिट सॉन्ग आप लोग को हम आज सुने। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर।

दर्दे करने को ये सॉन्ग दे और हम चलते ही दोस्तों आप लोग जानते ही यार नहीं घंटक का सोन और वो कुछ और थे और ओल्ड इन गोल्ड और कुछ है दोस्तों और जो नया नया गीत है वो तो भी अपनी जगह पे भी वो ठीक है लेकिन हम चलते हैं यार नहीं घंटक का जोन और वो है बहुत प्यार करते हैं और करते ही रहेंगे मोफिक राम है साजन।

प्यार करते हैं, तुझको जन्म तार आया है लेवाड़ से दोस्तों। मैं दीवाना मस्ताना और मैं दी मुगेश का ये सॉन्ग है।

और दोस्तों मैं दीवाना मस्ताना, और ये बहुत पुराना गीत है और करोड़ों को दिल चुराने वाला वो है माइती मुकेश का ये सॉन्ग है। और इस फिल्म में दोस्तों बहुत पुराना फिल्म है 40 Days का ये मूवी सॉन्ग है जो आम सबके लिए हमने चला दिया है। इसमें प्रेमनाथ ने काम किया है शकीला के साथ। तो दोस्तों तो प्यार का सुहाना जफर आपको हम सुनाएंगे। मुकेश एवरग्रीन्स मेलोडी सॉन्ग है, ओल्ड हिंदी रोमांटिक सॉन्ग आपको हम यहां से सुनाएंगे। और गीत है इस फिल्म में दोस्तों, लेकिन आपको हम सुनाएंगे प्यार का सुहाना जफर है।

और दिल भी हम आपको दिया है और आप भी अपना दिल उसी को दीजिए जिस तुम्हारे दिल के काबिल है। तो काबिल के बांज करते हैं तो हम चलते हैं। मौफी के नाम है भरोसा, निकट हो द्रियन सस्तक का ये फिल्म है और गुरुदत्त और आशा परेख ने इस मूवी में सुपरहिट फॉलो फिल्म है जिसमें काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए दोस्तों।

0: ना होते।
1: यस दोस्तों, तो ये कुछ बीच बीच में कभी कभी अच्छे अच्छे गीत सुनाने के मूड में हम हो जाते हैं, और जब गीत सुनाते हैं तो कभी कभी दिल भी रो देते हैं हमारे दोस्तों।

तारीफ करते हैं गुरुदत्त और आशा पारेख ने। भरोसा मूवी के नाम है निकटी द्री एंसेस्टर का बदमाश श्री मोहम्मद रफी का ये गया हुआ जोंग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला अगला अगला अगला जोंग की ओर है।

ऐ दिल मुझे भी आ बता दे तू किस पे आ गया है, अगर आपके दिल किसी पे आ गया है तो जरूर बता देना।

0: इस मूवी में और फिल्म के नाम है अंदाज 1949 का ये सॉन्ग है जिसमें दिलीप कुमार ने काम किए हैं और राजेंद्र कुमार ने काम किए हैं नौजात के साथ में
1: ना दिल ना
0: हम चलते हैं एक और सॉन्ग आशा भोसले मधुबाला अशोक कुमार इस फिल्म में काम किए हैं हावड़ा ब्रिज

मूवी नाम थी हावड़ा ब्रिज। एक और अगला सॉन्ग किम जते दूर कोई गाए धुनिए।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 907 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

आंच में जाके पता चला है कि चोली के पीछे क्या होता है। चोली के पीछे दिल होता है दोस्तों, और दिल तो सबके पास होता है, लेकिन किसी को उजला दिल होता है,

छोड़ दो, ये आपका कौन सा दिल है आपको खुद मालूम होगा, लेकिन ये चोली के पीछे और कुछ दिल है दोस्तों। तो यहां से हम अगला और हॉट वन और कुछ नाचनी स्विंग के गीत हम आपको सुनाते हैं। क्या है

और नमकीन हो गई है, नमकीन हो गई है वो, और पानी पानी का ये सॉन्ग थे हमारी यारो, और हम चलते हैं अगला अगला हॉट वन सॉन्ग की ओर। और वो क्या है, वो क्या है, चोली के बात, चोली के बात क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है?

और गुपचुप गुपचुप गुपचुप गुपचुप क्या होता है, गुपचुप में बहुत कुछ होता है। और जाए के और सो गए किसी और जगह जहां पान नहीं सोना था।

और दारू पी के डांस करे और डांस करे, बिना दारू पिए यहाँ लोग डांस करते और गीत कहते हैं कि दारू पी के और डांस करे।

और छम्मा छम्मा कौन है, किसका नाम है छम्मा छम्मा, और छम्मा छम्मा के बाद तो हम और आगे चलते हैं, और वो क्या है।

वो नींद के मारे में क्या क्या होता है दोस्तों, कुछ गलत मत करने ना, नींद में बहुत कुछ हो जाए।

मर के भी हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों के सेवा में विजयंती का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नए मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को हम बधाइयाँ पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं, हम आपको हृदय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं, हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस साल में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं, और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को विदेश में सुन रहे हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं। सुनने वालों, अब से लेकर दिन में यानी 12 बजे तक मैं आप सभी की सेवा करने वाली हूँ, इसी आशा के साथ कि जिस तरह से मैं अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश करूँगी, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी।

ये सुंदर शब्द हमने पेश किए हैं आप सभी सुनने वालों और सभी दुखी प्राणियों के लिए। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। मुकेश जी आपको सुनाने वाला है फ्रॉम द मूवी हिमालय की गोद में।

मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी हिमालय की गोद में। किशोर दा आपको सुनाने वाले हैं, तुम बिन जाऊँ कहाँ।

मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे तुम बिन जाऊँ कहाँ कि दुनिया में आके कुछ ना फिर चाह सम कभी तुमको चाह के अभी आप सुन रहे थे। सुनने वालों लता जी की आवाज़ में आप सुनेंगे इस बार और फिल्म का नाम है कति पतंग। गीत का बोल है ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है मेरी जिंदगी है क्या एक कति पतंग है।

0: घंटी के आइकन पर मेरे आने वाले।
1: अभी आप सुन रहे थे ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या इकती पतंग है। उपहार है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं माझी नैया ढूंढे किनारा।

अभी आप सुन रहे थे माझी नैया ढूंढे किनारा, मुकेश जी की आवाज़ में हमने ये गीत पेश किए हैं। फ्रॉम द मूवी उपहार से आपने सुने हैं। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो पर आप सभी ने चुन किए हैं सुनने वालों, और मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं, जो उनकी तमन्ना हो बर्बाद हो जाए।

अभी आप सुन रहे थे जो उनकी तमन्ना हो बर्बाद हो जा। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, और मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। एक बहुत सा सुंदर गीत हमने चुन कर रखे हैं आप सभी के वास्ते। लेकिन ये गीत शुरुआत करने से पहले मैं ज़रा आप लोगों को बता दूं कि आधे घंटे तक लगातार हमने कुछ सेंटीमेंटल सॉन्ग्स आप सभी के वास्ते पेश किए हैं, और अब कुछ बदलाव हम लाने वाले हैं प्रोग्राम में। तो चलिए ये गीत हो जाए आप सभी के वास्ते।

अभी आप सुन रहे थे अरे आने वाले आ तू देर ना लगा, और फिल्म का नाम है कहीं और चल। लता जी आपको सुनाने वाले थे। एक फूल दो माली से हम पेश करते हैं सुनने वालों, सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर।

एक फूल दो माली से भी आप सुन रहे थे सुनने वालों। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, हो गए तेरे हो गए ये ना पूछो कब क्यों और कहाँ। फ्रॉम द मूवी यानी द टाइटल फ्रॉम द मूवी कब क्यों और कहाँ से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। चलिए मिलकर सुनते हैं प्रोग्राम में

अभी आप सुन रहे थे हो गए तेरे हो गए प्यार में तेरे खो गए ये ना पूछो कब क्यों और कहाँ। द टाइटल फ्रॉम द मूवी कब क्यों और कहाँ से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते लता मंगेशकर जी आपको सुनाने वाले थे। रुक जा ए हवा फ्रॉम द मूवी शागिर्द से हम पेश करते हैं।

रुक जा ए हवा, थम जा ए बहार, भी आप सुन रहे थे सुनने वालों। और ज़रा सा हम देखे तो सीता और गीता, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं एक और गीत है ये, जिसमें कुछ हवा की बातें आती है। तो चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे हवा के साथ साथ घटा के संग संग ओ साथी चलो। घड़ी की ओर जब के हम देखते हैं तो ठीक यानी समय हो चला है विज्ञापन का, तो चलिए मिलकर सुनते हैं विज्ञापन।

0: दिल तुम्हारा।
1: मर के भी हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों की सेवा में विजयंती का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नई मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को हम बधाइयाँ पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं हम आपको हृदय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस हाल में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं, और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को विदेश में सुन रहे हैं आप सभी को भी हम याद करते हैं। सुनने वालों, अब से लेकर दिन में 12 बजे तक मैं आप सभी के सेवा करने वाली हूँ, इसी आशा के साथ कि जिस तरह से मैं अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश करूँगी आप लोग को जरूर पसंद आएगी। सुनने वालों, अभी आप सुन रहे थे ओपनिंग सिलेक्शन मेरे हिस्से के प्रोग्राम में। आप बुलाए और मैं ना आऊँ ये तो हो ही नहीं सकता। सुनने वालों, हमेशा की तरह जब मैं अपने प्रोग्राम को शुरुआत करती हूँ तो एक भजन से मैं अपने प्रोग्राम को शुरुआत करती है यानी हूँ, और आज की इस हसीन रविवार की सुबह की प्रोग्राम में चलिए ये सुंदर सा भजन हम पेश करते हैं। आप सभी के वास्ते मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, जुबिन नौतियाल जी आपको सुनाने वाले हैं।